हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सभी श्रोताओं को सुप्रभात। हमारा FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज श्रोताओं सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सुबह के 5:58 होने वाले हैं, 59 मिनट होकर के 3 सेकेंड आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: 刚说。
1: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। हिंदी में समाचार के बाद अब आइए करें चिंतन। विषय आज का अध्ययन, ज्ञान का आधार।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, ना फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। पर डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य लालसा बताई तो इंद्र ने उसे बहुत समझाया कि विद्या वरदान से नहीं मिलती, उसके लिए तो अध्ययन करना चाहिए। पर वह तो तुरंत फुरंत बिना परिश्रम किए विद्वान होना चाहता था, उसे इंद्र की सलाह भला क्यों अच्छी लगती। वह तपस्या में लीन रहा। एक दिन यवकृत समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी में बालू भर भर कर समुद्र में फेंक रहा है। यवकृत के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा कि ऐ बाबा, तुम यह क्या कर रहे हो? बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, असल में मुझे समुद्र के उस पार जाना है। बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवकृत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानो ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र के हमारे प्रिय श्रोताओं, प्रभु की पावन स्मृति और भक्ति की मधुर सरिता में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मन के द्वार खोलें और श्रद्धा के दीप जलाकर ईश्वर के चरणों में अपने भाव अर्पित करें। प्रस्तुत है ये पहला भक्ति गीत कार्यक्रम।

मोहम्मद अजीज और उनके साथियों की आवाजें थी भक्तिमय ये। और अब हरि का नाम वह अमृत है जो जीवन की थकान मिटा देता है, उस भजन को आइए सुनते हैं। एक सच्चा हरि स्मरण करते हैं, मन में प्रेम शांति और आनंद जगा दे। वो आवाज महेंद्र कपूर की है।

सुमन कल्याणपुर और उनके साथी गा रहे थे इस गीत को, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि नाम वह अमृत जो जीवन की थकान मिटा देता है, एक सच्चा हरि स्मरण मन में प्रेम शांति और आनंद जगा देता है। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हर हर महादेव, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और जिनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, उन भोलेनाथ के जयकारे से भय मिट जाता है और विश्वास जागृत हो जाता है और खुद ही भक्त कह उठता है हर हर महादेव।

महादेव संहार के नहीं नव सृजन और कल्याण के भी प्रतीक हैं। श्रोताओं, उनकी कृपा से जीवन में धैर्य, साहस और संतोष का प्रकाश फैलता है। सुख को अपने भूल जा बंदे, जीवन का सबसे बड़ा धन प्रभु का स्मरण और सेवा का भाव। जो अपना अहंकार छोड़ देता है वही सच्चे आनंद का अधिकारी बनता है।

0: महेंद्र कपूर के गाए इसी भक्तिमय गीत के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए, श्री रामचरित मानस गान का समय हुआ।
1: एपिसोड नंबर 402 402।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंड ने जहां ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहां दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रामकथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

श्री रामचरितमानस गान की आज की श्रृंखला हम सभी सुन रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम तो चल रहे हैं आपके अपने फेवरेट एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, लेकिन अब वक्त हुआ है आज आपके इसी केंद्र आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देने का, कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत। सुबह 7 बजे सुनिएगा भोजपुरी और झारखंडी लोकगीत लोक रंग के तहत 7:20 पर विविधा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज वार्ता सुनिए जीवन में संगीत का प्रभाव और वार्ताकार विजय कुमार दुबे। सात बजकर 30 मिनट का समय आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुनने का, जन जन की वाणी आकाशवाणी, वाचन राजीव कुमार, अंजना बाखला एवं सूरज रजक का है। प्रस्तुत करता होंगे राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। तो सुबह 7:30 पर आज ही जन जन की वाणी आकाशवाणी। रोज की तरह ही सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से मॉर्निंग मेलोडी। 8:45 पर फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आज समर्पित सुमन कल्याणपुर को। हेलो हजारीबाग कहने आऊंगा सुबह 10 बजे। आज कई तरह की चर्चा है, जिसमें विश्व महासागर दिवस पर चर्चा होगी, सूचना शिक्षा और मनोरंजन में आकाशवाणी की क्या भूमिका, साथ ही स्थानीय गतिविधियां, मौसम, न्यूज़पेपर की सुर्खियां, आज का इतिहास और बहुत कुछ।

आज शाम आप 6:02 पर अंगना कार्यक्रम सुनेंगे, उससे पहले 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। उससे पहले आप 5:30 पर खेतीबारी और 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार के बाद 5:02 पर इवनिंग मेलोडी सुनिएगा। आज शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। जिले में आजकल और प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:00 से लेकर के 7:15 पर, 7:15 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, साथ ही 7:30 पर ऑल टाइम हिट्स, रात्रि 8:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, और 8:10 पर विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण रांची।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा रजनीगंधा। यह है फिल्म संगीत का हमारा विशेष कार्यक्रम। 10:30 पर एक फिल्म से आप सभी सुनिएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। और 11:10 पर कार्यक्रम और सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें रिले और प्रसारित होने हैं सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:54 और 36 सेकंड होने को थोड़े ही सेकंड्स के बाद आप सभी संस्कृत में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से लोक गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं। भोजपुरी लोकगीत चल रहा है अब स्वर गंगेश्वर पांडे और चंचल का।

गौतम कुमार महतो, पायल मुखर्जी, आर के अरुण और गौतम कुमार के साथ इनका खोरठा लोकगीत। अब यही समाप्त होता है कार्यक्रम लोक रंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है विविधा। आज वार्ता का विषय जीवन में संगीत का प्रभाव। वार्ताकार हैं विजय कुमार दुबे।

जीवन में संगीत का प्रभाव। सृष्टि के स्वर्णिम बिहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का महत्व मानना ही पड़ता है। जीवन रूपी ग्रंथों को हम कहीं से पलटते हैं तो कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसे संगीत से शून्य कह दिया जाए। मनुष्य जन्म लेते ही गीत सुनता है। आज मोहे अंगनवा जन्म ले ले होरिलवा। बच्चों के जन्म लेते ही माताएं सोहर गीत गाना शुरू कर देती हैं। मृत्यु होने पर भी गीत सुनते सुनते श्मशान तक की यात्रा करता है। उसे घंटे घड़ियाल और राम नाम सत्य है के ध्वनियों के साथ उसके स्थूल शरीर को शून्य में विलीन कर दिया जाता है। इस मानव का

0: शरीर पांच तत्वों के मिलने से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है और यही तत्व जीवन के आधार माने जाते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होने पर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। समस्त जड़ चेतन का मूल आधार इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इन पांच तत्वों में संगीत मौजूद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति संगीतमय वातावरण एवं संगीतमय तत्वों से परिपूर्ण है। संगीत आत्मा का मूल आधार है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है। जिस प्रकार आत्मा का संबंध परमात्मा से माना जाता है, उसी प्रकार स्वर का संबंध आत्मा से है। इससे संगीत और आत्मा का संबंध प्रमाणित होता है। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी हो, संगीत से अछूता नहीं हो सकता। कहावत है कि गाना और रोना सभी को आता है। जो व्यक्ति अपने विवेक अभ्यास से स्वर ताल पर अपना अधिकार कर लेता है, उन्हें समाज में आदर भाव से देखा जाता है, उन्हें गवैया की पदवी दी जाती है। परंतु जो संगीत साधना में नहीं रहते, वो भी गायक से कम नहीं है। गांवों में गाने वाले लोक गीतों के विभिन्न प्रकार प्रचलित होते हैं, जैसे कपड़े धोते समय धोबियों का गीत, खेतों में पानी की सिंचाई करते समय किसानों का गीत, पशु चराते समय चरवाहों का संगीत, जिसे बिरहा भी कहते हैं, उस साधक से कम नहीं है। संगीत मानव जीवन के दिनचर्या में समाहित है, जैसे विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक समारोह अन्य जगहों पर। इस संसार में संगीत का जादू जैसा असर है। पावस की लाजवंती संध्याओं की श्वेत श्याम मेघ मालाओं से प्रस्फुटित नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं, कृषक लहलहाते फसलों को देखकर अचानक अलाप ले उठता है, काल रूप विषधर भी बीन की स्वर लहरियों में खोकर सपेरा की पिटारी में बंदी बन जाता है। मनुष्य जीवन पथ के सभी मोड़ पर अनेक प्रकार के संगीत प्राप्त करता है। युद्ध के मोर्चे पर उत्साह वृद्धि के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के सैनिक विभिन्न प्रकार के संगीत का ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, चारित्रिक उत्थान एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का उत्तम साधन संगीत है। संगीत की गहराई मापी नहीं जा सकती। मनुष्य ज्यों ज्यों इसकी गहराई में उतरता, उसे और अधिक व्यापक बड़ा दिखाई पड़ता है। इसमें रुकने का एक ही माध्यम है, साधना का पथ, अर्थात रियाज करना, प्रैक्टिस करना। प्रसन्नता की बात यह है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डॉक्टर संगीत के रहस्यपूर्ण तत्वों के खोज में लगे हैं, जिससे लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक रोगों पर पक्षघात अथवा कालिज के रोगियों पर संगीत की स्वर लहरियों का अचूक प्रभाव दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के बूमब्रिज एक प्रकार के जंगली घोड़े संगीत की सहायता से भारी संख्या में पालतू बन गए। लंदन के एक अस्पताल में गूंगे, बहरे और पागलों पर किए जाने वाले संगीत के प्रयोगों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में डेनमार्क में गायों को दूहने के पहले उन्हें संगीत सुनाई जाती है जिससे वो अधिक दूध देते हैं। संगीत के इस प्रभाव से वर्तमान समय में अच्छे अच्छे चिकित्सालयों, अस्पतालों में भी म्यूजिक थेरेपी, संगीत थेरेपी आरंभ हो गया है एवं असाध्य रोगों के लिए रागों का भी चयन किया गया है। जैसे कब्जियत के लिए राग गुनकली अधिक सार्थक है, राग गुनकली का अभ्यास करना। मधुमेह रोगियों के लिए, डायबिटीज रोगियों के लिए राग अहीर भैरव अधिक सार्थक है जो प्रातःकालीन राग है। हृदय रोग के लिए राग चंद्रकोश काफी सार्थक सिद्ध हुआ है। डिप्रेशन के लिए राग ललित एवं राग पीलू काफी सार्थक है। पैरालिसिस के लिए रागनी भैरवी, यह भी प्रातःकालीन राग है, काफी सार्थक है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए राग भूपाली, जो संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों का प्रारंभिक राग माना जाता है, यह काफी सार्थक है। भारत के नामी गिरामी अस्पताल भी संगीत चिकित्सा प्रणाली को अपनाने लगे हैं। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में प्रहलाद के नाम से म्यूजिक थेरेपी खोला गया है। नई दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के कमरों में भी राग आधारित सॉफ्ट म्यूजिक बजाए जाते हैं। एम्स के चिकित्सकों ने भी इस थेरेपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिससे रोगियों को आराम मिलता है। अतः संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है। संगीत मानव जीवन के धड़कन का स्पंदन है, सृष्टि के बिहान का नव किरण है, नव किरण है, नव किरण है। जय संगीत, जय संगीत, जय संगीत।
1: जीवन में संगीत का प्रभाव। ये वार्ता सुन रहे थे आप सभी, वार्ताकार थे विजय कुमार दुबे। विविधा इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करना है। 7:30 हो गए। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुनिए, जन जन की वाणी आकाशवाणी। वाचन स्वर दिया है राजीव कुमार, अंजना बाखला एवं सूरज रजक ने। प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन। तो आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जन जन की वाणी आकाशवाणी।

कुछ आवाजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, हमारी सामूहिक चेतना का वो प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से सबसे बड़ा और प्रभावी नाम आकाशवाणी का है।

ये ऐसी आवाज है जो न सिर्फ हमें जगाती है बल्कि जागृति के उच्चतम स्तर पर ले आती है और हम पहले से बेहतर और बेहतर महसूस करते हैं।

0: सूचना, ज्ञान और मनोरंजन की सर्वोत्तम खुराक अगर कहीं से हमें मिलती है तो वो आकाशवाणी ही है। बात सेहत की हो, शिक्षा की हो, युवा, महिला, बच्चे या बुजुर्गों की हो, आकाशवाणी पिछले 90 वर्षों से सभी की आवाज बनी हुई है।
1: ग्रामीण विकास और कृषि कार्य में आकाशवाणी ने जो कार्य किया है, जो जागृति लाई है, उसके करीब आज कोई खड़ा नहीं है।
0: नवीनतम कृषि अनुसंधान, पशुपालन, पशु संवर्धन या किसान जागृति की बात हो, आकाशवाणी ने हमेशा से पहली पंक्ति में खुद को खड़ा रखा है।
1: कृषि से जुड़े कार्यक्रमों की साख को इस बात से समझा जा सकता है कि बहुत सारे किसानों ने उन्नत कृषि कार्य रेडियो के कार्यक्रमों से ही सीखा है। इनमें से कुछ की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनी।
2: अपनी लोकप्रियता, अपनी पहचान और उन्नति का सारा श्रेय खेती कार्य से जुड़े श्रोता आकाशवाणी के कार्यक्रमों को देते हैं। आकाशवाणी के योगदान पर बात करते हुए इनके शब्द कम पड़ जाते हैं, पर भावनाएं कम नहीं होती।
1: वर्ष 2016 में झारखंड के कृषकों का एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल दौरे पर गया था। इसमें हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के सोनडीहा तुरीवार के छवि प्रसाद भी थे।
0: कभी पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले छवि के एक सफल किसान बनने में सबसे बड़ा श्रेय आकाशवाणी का ही है। इस बात को वो हमेशा हर मंच से बहुत ही गर्व से दोहराते हैं।
3: मान के चलिए कि 2000 आकाशवाणी से जुड़े, उससे पहले क्या, मैंने आकाशवाणी ही के चलते फिर मान लिया कि हम केवीके हुआ, उसके बाद आत्मा से जुड़े, केवीके से जुड़े, लेकिन ये सारा चीज जो है सबसे पहले हम आकाशवाणी से जुड़े, उसके बाद मैंने इधर जुड़े हम।
4: तो आकाशवाणी में भी आप कार्यक्रम देते रहे?
3: जी, आकाशवाणी में हम देते रहे, जैसे किसान वाणी हुआ और उससे बहुत किसान अगल बगल के मान ये प्रेरित हुए, वहाँ कुछ हम जो अपना हमारा अनुभव था हम बताए, और मान लिया कि हम बकरी पाले हुए हैं, उसके बाद जैसे खेती हम किए सब बरसाती प्याज, उस समय बरसाती प्याज कोई लगाता नहीं था, एक बार गेंदा का खेती किए, उसके बाद अभी ओल का खेती हो गया है, सब सारा चीज जैसे बताया, जैसे ओल ही है तो ओल को कैसे लगाना है, कितना दूरी में लगाना है, हमारा आवाज को किसान लोग सुने, उसके बाद बहुत किसान अभी भी हमको पूछते हैं कि भाई अभी अभी आप हम आकाशवाणी में आपका हम सुन रहे थे, आप बता रहे थे भैया, बहुत मने अच्छा लगा। के बाद हमने जैसे केवी के द्वारा हम लोग यहाँ आपको पूसा एग्रीकल्चर नई दिल्ली, वहाँ हम लोगों को लगा गया, उसके बाद वहाँ से आगरा हुआ और

0: फ्री अनुसंधान केंद्र हुआ, मथुरा हुआ, और उसके बाद में देखे वहाँ पर भी हम लोग को भी यूपी भी गए, वहाँ पर भी हम लोगों को घुमाया गया, दिखाया गया कि इस तरह से खेती है, बैंगन की खेती देखिए, बहुत प्रकार की खेती हम खाया गया। इजराइल भी गए, इजराइल गए तो इजराइल में हम लोग देखे कि कम पानी में बहुत कम पानी में किस तरह का खेती होता है, ड्रीप में खेती हो रहा है, पैसे मंथिंग में खेती हो रहा है, इस तरह की जानकारी पॉली हाउस में खेती हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, इस तरह भी हम लोगों को दिखाया गया। हमारा परंपरागत मान लिया कि हमारा बाप दादा खेती बाड़ी के काम करते आए लोग, और हम भी जो है सब खेती बाड़ी किए, लेकिन उस समय का खेती में और आकाशवाणी से जुड़ने के बाद, इधर के बीच आत्मा से जुड़ने के बाद खेती में कुछ बदलाव हुआ। दूसरा तरह से जो परंपरागत खेती कर रहे थे, जो सिंचाई कर रहे थे, उस समय मल्टी नहीं था, ड्रिप नहीं था, और मान लिया कि जैसे कि बीज, जैसे मान लिया हाइब्रिड बीज हो गया, और ये सब नहीं था।
1: जैसे इजराइल तक आप गए तो उसमें रेडियो की भूमिका कितनी है, आकाशवाणी की भूमिका कितनी रही है?
0: आकाशवाणी का भूमिका इसमें मैंने कि 80% हम आकाशवाणी का भूमिका देंगे। समय समय पर आकाशवाणी भी हजारीबाग में भी बुलाया गया, वहाँ पर तो हम गए हैं, 2-3 बार वहाँ भी गए।
2: आकाशवाणी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसके श्रोताओं में हर वर्ग के लोगों का शामिल होना है। आज भी हर वर्ग के श्रोताओं में रेडियो की लोकप्रियता है। पढ़ा लिखा तबका हो, कामकाजी हो, समाज का श्रमिक वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को अपने साथ आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों से जोड़ रखा है। 9 दशक से दिलों में, श्रोताओं के दिलों में राज करने के पीछे जो कारण है उसे एक श्रोता के नजरिए से समझते हैं, जैसा वरीय अधिवक्ता रीना वर्मा मानती है।
3: सबसे पहले रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का जो 90 साल पूरा हुआ उसके लिए सभी श्रोताओं और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऑल इंडिया रेडियो जब तक धरती रहे तब तक ऑल इंडिया रेडियो रहे, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो उस चीज का नाम है जो मोटिवेट करती है जिंदगी जीने का, एक जैसे लाइफलाइन कहते हैं वो है ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं बता दूं कि पिछले 4 दशकों से मैं रेडियो सुनती चली आ रही हूं, और सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रेडियो सुनती थी, हर एक स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो को मैं सुनती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पिछले 10 सालों में रेडियो में कई बार बोलने का मौका भी मिला है, तो इसलिए रेडियो का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: कानूनी सलाह जैसे कार्यक्रमों में आप शामिल होती रहे, फीडबैक क्या आपको जैसे किस तरह से मिलता?
3: चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, पिछले 17-18 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मुझे मौका मिला कि मैं आम जनता को कानून के बारे में सरल भाषा में बता सकूं, और इसका मौका दिया है ऑल इंडिया रेडियो ने। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया सभी को जागरूक करने का, और मैंने लगभग सभी विषयों में ऑल इंडिया रेडियो में कानूनी सलाह के अंतर्गत, कानूनी जानकारी के अंतर्गत जो बातें बताई हैं उसे लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि अच्छे अच्छे लोग और कई सारे लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम सुन रहा था कानूनी सहायता वाला, और आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो इससे पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो हर जगह कोने कोने में लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है, तो इसका बहुमूल्य योगदान है ऑल इंडिया रेडियो का।
1: एक श्रोता के रूप में जब आप रेडियो से जुड़ी तो वो कौन सा दौर था, और वहाँ की अगर कोई स्मृति, कोई मधुर स्मृति आपके जेहन जीवन में हो तो बताइए जरूर।
3: मैं श्रोता के रूप में लगभग 90 की शुरुआत में ही जुड़ गई थी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। तो स्कूल से आने के बाद हम लोग रेडियो में पुराने से नए गाने, अच्छे अच्छे गाने सुना करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी गायक थे तो हमें रेडियो से ज्यादा जुड़ाव हो गया, और हमें उस चीज का मतलब रेडियो के जो गाने होते थे, आप 1950 के गाने सुन रहे हैं, आप 1960 के गाने सुन रहे हैं, आप हर गायक को जान रहे हैं, पुराने गायक को आज के बच्चे नहीं जान पाते, लेकिन उस जमाने हम लोग सारे गायकों को इसलिए जान पाते थे कि ऑल इंडिया रेडियो में जो भी गाना प्रस्तुत किया जाता है वो गायकों का नाम, गीतकार का नाम, लेखक का नाम, सबका नाम बता के बताया जाता, तो हमारा एक ज्ञानवर्धन हुआ करता था। फिर एक सखी सहेली प्रोग्राम आकाशवाणी में आता था। जब पिछले 24 साल पहले मेरी शादी हजारीबाग में हुई और मैं हजारीबाग रेडियो स्टेशन से तब से जुड़ी हुई हूँ, और मैं मेरी शादी के बाद मैं लगातार 24 साल से रेडियो सुनते चली आ रही हूँ, सखी सहेली प्रोग्राम और सुबह आकाशवाणी के जितने प्रोग्राम, जो रंगारंग कार्यक्रम, जो लोकगीत शाम को जो लोकगीत आदिवासी लोकगीत वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं मैं सब सुना करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे अपने धरती से अपने झारखंड के लोक संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है, वहाँ के लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, उनकी बातों को समझने का मौका मिल रहा है। इसलिए आकाशवाणी हजारीबाग मैं 24 साल से जुड़ी हूँ।

0: और एक मुझे अपना परिवार जैसा लगता है आकाशवाणी हजारीबाग, और मेरे हर सुख दुख में लगता है कि रेडियो के तौर पर ये मेरे साथ खड़ा है और मुझे मोटिवेट कर रहा है। आकाशवाणी में जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम आता है शुक्रवार और सोमवार को, अंगना जो प्रोग्राम है वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, और जो उद्घोषकों का प्रोग्राम प्रस्तुत करने का तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। इसलिए मुझे ऑल इंडिया रेडियो को मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि वो सभी के जीवन को एक तरह से मोटिवेट करके चला रहे हैं। हर आयु वर्ग के सेवानिवृत्त हो या छात्र हो या गृहिणी हो या कामकाजी महिला पुरुष हो, उन्हें रेडियो में गाने सुनते हुए, प्रोग्राम सुनते हुए काम करने में गति मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी हजारीबाग को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग जिला स्कूल कैंपस में करीब डेढ़ दशक से गणित पढ़ा रहे शिक्षक गिरीश कुमार रजक एक सजग श्रोता तो हैं ही, आकाशवाणी के शैक्षणिक प्रसारण वार्ता, भेंट वार्ता और परिचर्चा में कई बार शामिल रहे हैं। उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से हमारे साथ साझा किया है।
2: जब से रेडियो आया और अब तक अगर देखा जाए तो रेडियो की उपयोगिता बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर हमारी सेनाएं जो दुर्गम स्थलों पर रहती हैं, उनको मैसेज या उनके मनोरंजन के रूप में हो। तो अगर कहा जाए कि रेडियो की उपयोगिता जो है सही मायने में अतुलनीय है। अगर हम देखें तो रेडियो से हम शिक्षा संबंधी जानकारी, जैसे दुर्गम स्थलों पर जहाँ इंटरनेट, बिजली अभी भी बहुत जगहों पर इन सब चीजों की पहुंच नहीं है वहाँ, तो उन सब स्थलों पर रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ, शिक्षा संबंधित किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उन सबको प्रसारित करके दी जाती हैं। शिक्षा के बाद जैसे देखा जाए तो कृषि में जो है, तो कृषि में भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, कीटनाशकों का उपयोग वगैरह जितना किसान भाई जो है सो चूंकि खेत पर रहते हैं तो रेडियो के माध्यम से जो है सो वे जानकारियां लेते रहते हैं, मौसम का पूर्वानुमान हो या फिर कृषि से संबंधित जानकारियां हो, तो इन सब चीजों को वो काम करते करते भी ये सब जानकारियां लेते रहते हैं और अपने मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन भी है जो हमेशा खेतों पर काम करते हैं, तो इन सब चीजों से जो है उनको जो पूर्वानुमान जो कुछ मौसम संबंधित, कीटनाशकों से संबंधित, उत्तम किस्म के बीजों से संबंधित जानकारियां अगर उनको प्राप्त हो जाती है और वो भी कार्य करते हुए खेतों में भी रेडियो पहुंच जाता है ना, और वहां पर उसमें कोई बिजली या इंटरनेट की आवश्यकता है नहीं, इन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो इसकी भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है।
3: जैसे आपके अपने जीवन में या आपका जो विषय है गणित, इन सब चीजों में रेडियो को लेकर आपका क्या अनुभव है?
2: जैसे अपने जो दैनिक जीवन, हम लोग तो उस दौर के भी लोग हैं जिस समय इंटरनेट नहीं था और टेलीविजन वगैरह बहुत कम उपलब्ध थे, तो हम लोग एक मनोरंजन या कुछ जो शिक्षा संबंधित जो रेडियो के माध्यम से जो है सो प्रसारित होता था, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो सोच या फिर जो कोर्स वगैरह आते थे उससे हम बहुत मोटिवेशन हमको मिलता था और बहुत सारी चीजें हम मोटिवेट होकर के मनोरंजन के माध्यम से और जो चीजें सीखते थे वो बहुत ही सराहनीय होता था। और आज भी अगर देखा जाए तो जैसे परीक्षा संबंधित तैयारियों की जानकारी वगैरह जो रेडियो पर हमेशा अक्सर प्रसारित होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़ करके अपना व्याख्यान देते हैं, तो ये दुर्गम स्थलों तक जहां, जैसे कहा जाता है कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, तो ये सब जो चरितार्थ होता है कि रेडियो की पहुंच वहां तक है जहां इंटरनेट की या फिर बिजली की समस्या है ये सब नहीं है, तो वहां के लोग भी बहुत लाभ लेते हैं रेडियो के माध्यम से।
3: जैसे आपका अपना विषय है, आपको भी मतलब कभी व्याख्यान देने का मौका मिला हो, इंटरव्यू वगैरह या टॉक वगैरह प्रकाशित की हो, तो इसका अनुभव आपका कैसा रहा रेडियो के साथ?
2: हाँ, इसका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि जैसे हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैथ साइंस की उपयोगिता आज के जो युग में है, तो वो सब की चर्चाएं हमेशा हम लोगों ने करी है और हमारे जीवन में भी ये सब सुन करके हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिला है और हम उससे लाभान्वित हुए हैं।
3: इसका आपके अपने
2: जीवन अपने जीवन में भी हमको बहुत लाभ हुआ है। रेडियो की उपयोगिता, जैसे हजारीबाग में इसका जो प्रसारण होता है उसमें हमको बहुत बार बुलाया गया है, तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करी जाती है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस,

0: वगैरह की तैयारियों के बारे में रेडियो पर प्रसारण होता है, और विशेष करके एग्जाम के दौरान जब कुछ दिन पहले कैसे जो स्टूडेंट्स हॉपलेस होते हैं, एक एग्जाम फोबिया टाइप का जो बनता है,
1: मनोवैज्ञानिक
0: दबाव जो होता है, उन सब दबावों से कैसे निपटा जाए। जैसे प्रधानमंत्री भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो ये सब चीजें जो है सो कैसे रेडियो के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक ये पहुंच बनती है। मेरा अनुभव है जो जैसे लॉज वगैरह में जो स्टूडेंट्स रहते हैं या अपने गांव से निकल करके आते हैं शहर में, और जहां उनके पास कोई टेलीविजन या कुछ का साधन नहीं होता है, एक मोबाइल होता है जिसमें ऐप रेडियो का भी उसमें उपलब्ध है, तो रेडियो के माध्यम से वे हमें सुनते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी या फिर परीक्षा के दौरान जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उन सब चीजों से कैसे निकला जाए, हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा करी है, डिस्कशन भी हुआ है जी। और स्टूडेंट्स का ये फीडबैक रहा है, हमारे स्कूल से जुड़े हैं वहाँ हजारों छात्र हैं, तो वे हमको आकर के बोलते हैं कि सर आप तो कल रेडियो पर थे, तो हमें बहुत गर्व फील होता है कि आपको लोग सुनता है, और उनका कहना होता है कि हाँ हम जरूर इसे लाभ लेते हैं सर। जैसे पिछले बार ही किन किन टॉपिक्स पर कितना मार्किंग होता है, कैसे स्टेप मार्किंग होता है, ये सब बहुत सारी चीजों पर चर्चा हमने करी थी, और इसका प्रसारण भी हुआ था हजारीबाग रेडियो के माध्यम से, और फीडबैक के रूप में हमारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर ये बहुत लाभ मिला हमको, और तब हमको पता चला कि नहीं रेडियो का जो प्रसारण है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो लॉज में रहते हैं जहां उनके साथ पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके साथ सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ये रेडियो के माध्यम से सुनकर जो जानकारियां लेते हैं, तो ये फीडबैक से उम्मीद और हमारी बढ़ गई कि रेडियो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इन सब एक्टिविटीज में, इन सब चीजों पर, ताकि लोग जो जिनके पास संसाधन की कमी है वे ज्यादा लाभान्वित हो पाए।
2: नारायण प्रसाद की उम्र 85 वर्ष के आसपास है। रेडियो सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के पेशे से वे जुड़े हैं। 90 के दशक से वे रेडियो से भी जुड़े हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में इनकी गहरी रुचि है, दिलचस्पी है। इनके शब्दों में हम आम श्रोताओं के मन के भावों को समझ सकते हैं, टटोल सकते हैं।
3: जिस समय से प्रसारण हो रहा है FM का, तब से हम बराबर रेगुलर जो है सो का हम श्रोता है जी। इसमें खास करके हमको जो रिपोर्टेज देते हैं न्यूज का, सेंट्रल हो कोई लोकल न्यूज हो, प्रादेशिक समाचार, साथ में आपको म्यूजिक खेती बाड़ी सब हमको प्रोग्राम तो अच्छे ही लगते हैं, करीब सभी सुनते ही है।
4: गीतों के प्रति आपके दिलचस्पी रहेगी?
3: गीत संगीत का इंटरेस्ट तो हमको शुरू से ही है।
5: कौन सा कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद है?
3: अभी जैसे कि हमको विभारती प्रोग्राम तो हमको बराबर सुन ही रहे हैं और अच्छा ही लगता है, साथ में यहाँ वाला जो रिले होता है आपको फरमाइश है, हेलो फरमाइश हुआ
4: जो फरमाइशी प्रोग्राम है,
3: हाँ हाँ
5: वो ज्यादा पसंद है।
3: हाँ जी,
5: तो किस तरह के गीत आप ज्यादा पसंद करते हैं?
3: 70 दशक का जो है, 80 दशक के गाने हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ मैंने हद तक आ गई आपको 90 तक ले। हाँ, क्लासिकल गाना हमको ज्यादा पसंद है।
5: और किस तरह का, जैसे कोई गायक या गीतकार है जिनका हाँ, आपको ज्यादा पसंद रहा हो?
3: गीतकार में आपको सोचे कि हमारा तो बहुत पेटेंट है आपको आनंद बख्शी जी, आनंद बख्शी RD वर्मन, और संगीतकार में हमारा पेटेंट है आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
4: गायक और गायिकाओं की बात, किनके गीत ज्यादा आपको पसंद?
3: गायक तो सब बढ़िया बढ़िया है सर, रफीक जी हमको बहुत पेटेंट है, और किशोर कुमार तो है ही,
4: दोनों ज्यादा लोकप्रिय।
3: हाँ हाँ हाँ, मुकेश तो खैर मेलोडियस।
4: शैलेंद्र के गीत आपको कैसे लगते हैं?
3: अपना जो है गायकी अच्छा उनका है।
4: रेडियो के जैसे अभी 90 साल पूरे हो गए, तो जैसे जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो से जुड़ाव रख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए?
3: अब उनके ऊपर ना है, हम तो अपना व्यक्तिगत अपना राय देते हैं, हमको सब अच्छे लगते हैं।
6: राजू केसरी पान की दुकान चलाते हैं, जीविकोपार्जन का इनके पास यही एक साधन है। दुकान में रेडियो इनका बजता रहता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बात करते हुए लगता है जैसे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व से हम संवाद कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व में आए इस सकारात्मक बदलाव के बारे में राजू केसरी कहते हैं कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने मुझे हर तरह की शिक्षा दी है।
7: रेडियो लगभग 97 से हम सुन रहे हैं।
4: 97 से सुन रहे हैं, तो मतलब किस तरह के
5: कार्यक्रम आप ज्यादा सुनते हैं?
7: रेडियो का तो सभी प्रोग्राम अच्छा होता है, सब ज्ञानवर्धक होता है, लेकिन मुख्यतः न्यूज वगैरह और परिचर्चा जो आती है रेडियो पे, नेशनल परिचर्चा में सामायिक विषयों के बारे में जो बताया जाता है, उस सब के बारे में
4: अखिल भारतीय वार्ताओं का
5: जी समाचार आप रेडियो का ज्यादा सुनते हैं?
7: मतलब समाचार नहीं छोड़ते हैं हम, हर हालत में सोचते हैं कि सुनिए,
4: मतलब राष्ट्रीय और प्रादेशिक,
7: प्रादेशिक दोनों।
4: और इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं?
7: सखी सहेली है, त्रिवेणी है, बहुत सारा है। सुबह में डॉक्टर आते हैं, सुबह में
4: स्वास्थ्य
7: वार्ता वाले जो आते हैं, डेली का प्रोग्राम है, घर संसार है, काव्य धारा है, बहुत प्रोग्राम है, लोकगीत भी है, लोकगीत।
5: और फिल्म संगीत के कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है?
7: फोन फ्रेंड है, आपकी चाहत है, फोन पे जो कॉल होता है, फोन इन फरमाइश।
5: अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप रेडियो कह रहे हैं 97-98 से सुन रहे हैं, तो लगातार सुन रहे हैं, तो इस जुड़ाव के पीछे का क्या कारण है?
7: परफेक्ट न्यूज, भरोसेमंद न्यूज, रेडियो में प्रोग्राम आता है वो भरोसे लायक होता है, कोई उसमें मतलब विवाद वाली बात नहीं है, सब ज्ञानवर्धक होता है, सभी उम्र के लोगों के लिए होता है,
4: सभी उम्र के लोगों के लिए।
7: अगर रेडियो सुन ले लोग एक साल भी तो बहुत बेसिक ज्ञान बहुत सारे सब्जेक्ट में हो जाएगा उन,
5: मतलब रेडियो एक तरह से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, हाँ, हाँ, तीनों चीजें आपको वहाँ से
7: एकदम सभी कुछ वहाँ पर उपलब्ध है और कहीं जाने का दरकार नहीं है। और रेडियो पहले के बनिस्बत अब और भी उम्दा होते जा रहा है, उसका प्रोग्राम और भी प्रस्कृत होते जा रहा है, बहुत अच्छा होते जा रहा है, प्रसारण बहुत साफ है, क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। पहले जो एकदम डिजिटल है, पहले बहुत डिस्टर्ब होता था, लिंक उसको नहीं मिलता था, तो अब तो एकदम क्लियर है। हम जब सुनते हैं, लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं रेडियो है या कुछ दूसरा चीज बजा रहे हैं आप, तो बहुत अचंभित भी होते हैं, अरे रेडियो में इतना अच्छा आवाज आ रहा है।
8: रेडियो से जुड़ा एक किस्सा पत्रकार कृष्णकांत सिंह ने भी हमारे साथ साझा किया है, जिसे सुनते हुए हम उसी समय में पहुंच जाते हैं।
9: ये वो दौर था जब संचार का एकमात्र साधन रेडियो ही था, आकाशवाणी के कार्यक्रम ही दुनिया को समझने जानने का एकमात्र जरिया था।
10: वर्ष था 1967, उस समय हमारे पिताजी एक रेडियो लिए थे, बड़ा ही बाजार में एक रेडियो दुकान था, एक बैंड की रेडियो थी और उसमें एक बैटरी लगता था 9 वोल्ट का, उसमें एक लाइसेंस मिला था, ऊपर रेडियो छपा हुआ था और उसमें निर्गत की तिथि भी लिखा हुआ था, रेडियो लाइसेंस भी ऊपर लिखा हुआ था। तो उस जमाने में रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी लोगों को। मेरे स्मरण में है कि आज भी मेरे यहाँ वो रेडियो लाइसेंस पड़ा हुआ है, हमारे गांव में लाइसेंस, हम उसको हाल फिलहाल घर साफ हो रहा था तो हम उसको सुरक्षित रख दिए हैं अपना स्मरण के लिए, यादगार के लिए। तो उस जमाने में रेडियो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, खासकर ग्रामीण इलाकों में अलग पहचान था, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, कुछ था नहीं। तो रेडियो में आज भी हमको स्मरण है कि वो 7:30 बजे वाला अनंत कुमार प्रादेशिक समाचार जो रांची पटना से
4: प्रसारित होता था,
10: 10 मिनट का समाचार होता था वो, जिसमें आपको लोकल बिहार हुआ करता था उस समय, तो पूरा बिहार झारखंड का न्यूज उसमें मिलता। फिर सुबह 8 बजे नेशनल समाचार होता, उसमें नेशनल समाचार में पूरा इंडिया का भी सुन सकते थे, कुछ बाहर का भी इंटरनेशनल समाचार भी हुआ करता था। इसके बाद यहाँ का समाचार लोगों को मिलता था, राजनीति हो, विज्ञान के क्षेत्र के हो, शिक्षा के क्षेत्र के हो, हर समाचार उसमें मिलता था।
4: फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के,
10: हाँ फिल्म संगीत का कार्यक्रम, विविध भारती का कार्यक्रम जो था बहुत पॉपुलर हुआ करता था। और ऐसे भी रांची पटना सारे रेडियो स्टेशन, भागलपुर हो, दरभंगा हो, सबका एगो अलग अलग टाइम में संगीत जरूर होता था। और सबसे बड़ा है जो यहाँ श्रोता चिट्ठी लिखते थे वो कार्यक्रम में, और वह लगा के रेडियो सुनते थे कि आज मेरा नाम आ रहा है कि नहीं, तो लीजिए आपके पसंद का हम गाना सुना रहे हैं, ये आप हैं झुमरी तिलैया। उस समय झुमरी तिलैया बहुत नामी था, जो पूरा माने इंडिया में आपको मिलता झुमरी तिलैया, आप झुमरी तिलैया का नाम जरूर सुनते थे। और लोग बहुत मजा से, बहुत ही माने समझे कि उत्साह से रेडियो सुनते थे कि आज मेरा नाम दिया है। चर्चा होता था गांव में कि अरे आज रेडियो में फलना आदमी का नाम दिया था, लोग लिख के पसंद का गाना भेजते थे, यहाँ से चिट्ठी लिखते थे लोग पोस्टकार्ड में, अंतर्देशी में। तो उस जमाने का एक अलग दौर था, उस जमाने की बात थी। खासकर शिवा का गीतमाला जो बाद में कहलाया, पहले बीना का गीतमाला था, अमीन सयानी की वो आवाज, वो बोलने का तरीका बहुत ही माने, आज भी कानों में जो उसे गूंजता है वो आवाज। समय होता था बुधवार के दिन और शाम में 9 बजे, शायद हमको याद है 9 बजे आसपास होता था कार्यक्रम, और उसमें जो साप्ताहिक जो टॉप का गाना होता था, फिल्मी गाने, वो अमीन सयानी जी सुनाते थे और बहुत ही एक लजीज आवाज, एक मधुर आवाज और कानों को बहुत ही माने कनपिरी कहिए उसको, इस तरह का जो है सो उस समय माहौल था। हर घर में रेडियो था। अच्छा, स्टार्टिंग में होता था कि रेडियो एक होता था लेकिन अगल बगल के लोग भी समाचार सुनने चलाते थे। एक माचा होता था, माचा मीन्स जिस पर पोरा रखा जाता था, तो जब सूखा मौसम हो, बरसात ना हो, समय उसको टांग दिया जाता था और लोग कुर्सी लगा के या खटिया पर बैठ के और वहां पे रेडियो का मजा लगे, टांग दिया जाता था ऊपर और फुल साउंड करके और वहां पे 10 आदमी 8-10 आदमी रेडियो खूब मिजाज से सुनते थे। उसके बाद समाचार सुनने के बाद उस पर चर्चा होती थी, राजनीति होती थी, जिसको हम लोग चौपाल भी कहते हैं। तो इस तरह का वो यादगार एक भूली बिसरी बात हो गई।
8: संचार, जन संचार के माध्यमों में आज भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों का कोई जोड़ नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो दशक दो दशक से नहीं 4-5 दशकों से लगातार आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं।
9: आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता ऐसी थी जिससे श्रोताओं के दिलों में इसने अपना स्थान बना लिया। ऐसे श्रोता न सिर्फ कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते थे बल्कि श्रोता संघ और रेडियो क्लब जैसे ग्रुप बनाकर कार्यक्रम सुनते रहे हैं।
8: इस प्रयास से इनकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी। व्यक्तित्व को निखारने में आकाशवाणी के कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि रेडियो के प्रसारण की क्वालिटी में निरंतर बेहतरीन बदलाव होते रहे।
9: AM प्रसारण के बाद FM ने तो क्रांति ही ला दी। साफ और स्पष्ट आवाज ने तो श्रोताओं को अपना मुरीद बना डाला। आज न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से दुनिया भर में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। रेडियो के कार्यक्रमों का दायरा पहले से ज्यादा विस्तृत हो गया है।
8: विस्तृत होता यह दायरा आकाशवाणी के भविष्य को, उज्ज्वल होते भविष्य को रेखांकित करता है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम हम सभी सुन रहे थे जन जन की वाणी आकाशवाणी। वाचन स्वर था राजीव कुमार, अंजना बाखला एवं सूरज रजक का। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजेंगे, 8 बजते ही समाचार प्रभात सुनेंगे आप सभी। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज, इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:30 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
7: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
9: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
8: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
10: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
8: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
11: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर

0: कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Khet Bachao Abhiyan, restricting fertilizer use and promoting soil health with Dr. J.P.S. Dabas, former principal scientist, ICAR, Indian Agricultural Research Institute. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, need paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting, the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक, दोनों सीटों पर जीत का दावा। भाजपा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक में बनाई रणनीति। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी आयोजित। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, वारदात की बना रहे थे योजना। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, मौसम विभाग ने 14 जून तक कई जिलों में गर्जन बारिश वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, राज्यभर में करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और परिमल नाथवानी के साथ गौरव वल्लभ शामिल हैं। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए गठबंधन के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एकजुट होकर

0: चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने तथा संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने का आह्वान किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दोनों सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा किया।
1: महागठबंधन की इस बैठक में, जिसमें तमाम घटक दलों के लोग, हमारे गठबंधन के नेता मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे।
0: बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है।
2: दोनों प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणब जी और वैद्यनाथ राम जी। हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले बाम दल, पूरा गठबंधन एकजुट है।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी के आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं कल देर शाम प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें विधायक रागिनी सिंह, पूर्णिमा दास साहू समेत करीब 10 विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। तय हुआ कि आज सुबह विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास पर विधायकों की चाय पर चर्चा होगी। इसके बाद विधायक विधानसभा के लिए रवाना होंगे। संवाददाताओं से बातचीत में विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि सबकी सहमति से प्रत्याशी का चुनाव होगा।
3: देखिए, प्रत्याशी जो भी होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे और सबके सहमति से ही होंगे। देखिए, अब कौन है ये तो ऊपर में तय होगा। हमारे 81 मतदाता हैं, जिसे भी चुनेंगे बहुत अच्छा सोच समझ के।
0: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य जारी है। रांची में विशेष शिविर लगाकर वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जा रहा है। बीएलओ ने बताया कि 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग की जा रही है।
4: यदि उनका नाम होगा 2003 के लिस्ट में तो स्वयं के नाम से, अगर उनका उस समय 2003 में वोटर आईडी नहीं बना होगा तो उनका माता पिता या तो उनका दादा दादी, उनके नाम से मैपिंग होगा।
0: रांची के पंडरा क्षेत्र में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने के आरोप में 3 लोगों को पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लिंग निर्धारण और अवैध अल्ट्रासाउंड गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। करगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के वीर जवान विद्यानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस हजारीबाग के कारगिल पॉइंट में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहीद की वीरता को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि विद्यानंद सिंह ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने भारतीय सेना के अनुशासन की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
5: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पैनल पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर नवीन पुलिस केंद्र में पीसीआर और हाईवे पेट्रोल कर्मियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, अवैध अड्डाबाजी और नशे के कारोबारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, संवेदनशील स्थलों की निगरानी तथा डायल 112 से प्राप्त सूचनाओं के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने एक वाहन से 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। खूंटी जिले के डोंगरा पंदन टोली बगीचा मैदान में एदेल संगा 22 पढ़ा जतरा का भव्य आयोजन हुआ। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य के साथ लोग जतरा का आनंद लेते नजर आए। मौजूद नेताओं ने मंच से एकता, एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मौसम। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में आज से 14 जून तक गर्जन, बारिश और वज्रपात तथा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ और बोकारो जिला कुश्ती संघ द्वारा संयुक्त रूप से बोकारो में सीनियर राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 220 से अधिक पहलवान, प्रशिक्षक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग की स्पर्धाओं में 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले हो रहे हैं।
6: 2 दिवसीय जो प्रतियोगिता है, इससे हमारे बोकारो के सभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, चास उपनगर में, विस्थापित क्षेत्र में कुश्ती के प्रति लोगों में एक उत्साह का वर्धन होगा। कुश्ती भारत की परंपरागत खेल है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों और मंथन के दौर में खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, राजनीतिक सरगर्मी चरम पर, आज नामांकन का आखिरी दिन। हिंदुस्तान ने लिखा है, भाजपा ने नहीं दिया प्रत्याशी पर जीत का दावा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर दिल्ली लौटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दैनिक जागरण लिखता है, SC ST एक्ट के लंबित मामलों पर पुलिस मुख्यालय सख्त, मिशन मोड में निपटारे का आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक, दोनों सीटों पर जीत का दावा। भाजपा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक में बनाई रणनीति। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में होगी परीक्षा आयोजित। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वारदात की बना रहे थे योजना। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज। मौसम विभाग ने 14 जून तक कई जिलों में गर्जन, बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, राज्य भर से करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।

0: मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

0: मीडियम वेव पास होची।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, लीजिए प्रस्तुत है मॉर्निंग मेलोडी आपके अपने FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मॉर्निंग मेलोडी सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को समर्पित। ये पहला नगमा मुकेश और सुमन कल्याणपुर के हैं, दिल ही तो है इस फिल्म से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मॉर्निंग मेलोडी में एक बार फिर से आपका स्वागत। अंतिम गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, साथी फिल्म से।

साथी फिल्म का ये गीत था। मुकेश के साथ थी सुमन कल्याणपुर। आज सुमन कल्याणपुर के कुछ चुनिंदा गीत मॉर्निंग मेलोडी में आपने सुने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। बस थोड़ी ही देर में सुबह के 9 बजेंगे और 9 बजते ही विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सभी सुनेंगे।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दोस्तों, आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़कता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खासतौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाशी घर की आवाज थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: पहले तुम।
1: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचा

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हेलो हजारीबाग।
3: टेन नाइन

0: फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
2: हेलो हजारीबाग, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल सभी को मेरा। आज मैं आप सबों के साथ हूं, आप सबों का दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट माणिक चक्रवर्ती। सपूर्ण नमस्कार स्वीकार कीजिए हेलो हजारीबाग में आज की सुबह का। आज 8 जून है और आज बहुत सारे विशेष दिवस हैं साथियों। सबसे पहले तो आज विश्व महासागर दिवस है और 90वां वर्ष जो है वो आकाशवाणी का गौरवशाली वर्ष हम लोग मना रहे हैं। गौरवशाली वर्ष के अंतर्गत आज सुबह आपने जन जन की वाणी आकाशवाणी भी सुना और ऐसे में अब हम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन में आकाशवाणी की भूमिका पर बात करेंगे। साथ ही स्थानीय गतिविधियां होंगी, मौसम का हाल होगा, खेल होगा, न्यूज़पेपर की सुर्खियां होंगी और सबसे पहले आज का इतिहास होगा। आठ जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से 1948 में एयर इंडिया ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। ये तो हुई संक्षेप में बातें, अभी तो सफर बहुत लंबा है। पहला पड़ाव इसमें दिख रहा है आज 8 जून के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का, आज ही के दिन इतिहास में क्या हुआ वो जानने का। सोलह की बात करें तो मुगल शासक औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया था आज ही के दिन और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था आज ही के दिन। 1924 को प्रसिद्ध पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन को आखिरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ते हुए देखा गया था, जिसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। 1948 की बात करें तो एयर इंडिया ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बॉम्बे, जो अब मुंबई है, से लंदन, काहिरा और जिनेवा के रास्ते के लिए अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की थी। हेलो हजारीबाग, ये इसका पहला पड़ाव है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान रहे हैं हम कि आज ही के दिन क्या क्या हुआ था इतिहास में। सीधे 2009 को आ जाए तो प्रसिद्ध भारतीय पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन हुआ था आज के दिन। 1830 को पेरू के अमेरिकी संगीतकार और गीतकार कोल पोर्टर का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 1937 को हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने जन्म लिया था आज ही के दिन और डिंपल कपाड़िया से संबंधित गीत भी सुनवाऊंगा आपको। 1975 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री व्यवसायी शिल्पा शेट्टी का जन्म हुआ था। 632 ईस्वी, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का मदीना में निधन हुआ था आज के दिन। 1809, अंग्रेजी अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार और लेखक थॉमस पेन का निधन हुआ था आज के दिन।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से हेलो हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी। चलिए ना घटनाओं के बाद सुविचार ले लें। सूरज हर दिन उगता है, इसलिए जीवन में नई शुरुआत करने में हमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने सोच बदल लेता है वह दुनिया बदल देता है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका है, जो है उसका सम्मान कीजिए और जो नहीं है उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए।

और अब अगला पड़ाव आ गया सुर्खियों का, जो लोकल समाचार से संबंधित है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सी की एक साथ मिलेगी रिपोर्ट। 70 सैंपल का टेस्ट एक साथ हुआ, 5 जिलों को होगा फायदा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में लगेगी केमी टेस्ट मशीन, 1.5 घंटे में दे देगी रिपोर्ट। जी हां श्रोताओं, झारखंड के रिम्स के बाद अब हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में केमी टेस्ट मशीन लगने जा रहा है। इसके लगने से सारी प्रक्रियाएं जो है वो सुचारू हो जाएंगी और शुरू भी कर दी गई है इसकी प्रक्रियाएं। केमी अर्थात कैमोनोमेलिनेस एनालाइजर मशीन लग जाने के बाद अब ब्लड से जो संक्रमण है उसे संबंधित रिपोर्ट के लिए 24 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह मशीन न्यूनतम 10 दिनों तक के संक्रमण को डिटेक्ट करने की क्षमता रखती है और एक साथ 70 सैंपल की जांच महज 1.5 घंटे के भीतर करने और रिपोर्ट देने में मशीन सक्षम रहती है। इसके लग जाने से हजारीबाग के अलावा, चतरा, कोडरमा के अलावा प्रमंडल के सभी आसपास के जिलों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। चलिए मौसम का हाल जान लें। आज का तापमान मौसम में दिन 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम में रहेगा, रात 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम का होगा। आज भी बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। भगवत गीता का पाठ झील सेंटर में शाम 6:30 से है और बुढ़वा महादेव हजारीबाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आज सोमवार को लेकर 6:30 से शुरू हो चुकी है सुबह से। एक और खबर, हजारीबाग से 10 किलोमीटर और कटकमसांडी मार्ग पर NH 100 से मात्र 2 किलोमीटर दूर छड़वा नदी, जिस पर DVC ने बांध बनाकर हजारीबाग की जनता की प्यास बुझाने का स्रोत तैयार किया है, वह केवल जल स्रोत ही नहीं लग रहा बल्कि मानव इतिहास का भी स्रोत लग रहा है। डैम के दक्षिणी हिस्से में लगभग 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में फैले पुरातात्विक अवशेष संकेत दे रहे हैं कि यहां कभी कोई बड़ा मानव वेबसाइट केंद्र या धार्मिक स्थल रहा होगा। क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्राचीन ईंटें, मृद भांड और टुकड़े लोहे के अवशेष और कई पक्की ईंटों से बनी संरचनाओं के अवशेष दिखाई दे रहे हैं।

हजारीबाग में कवि सम्मेलन हुआ, साहित्य और संवेदनाओं से सराबोर हुई श्रोताओं की शाम। जी हां, राष्ट्रीय कवि संगम द पोएट्स पंचायत एवं बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिली। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं युवा रचनाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए हम लोग। नमस्कार श्रोताओं, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, विश्व महासागर दिवस क्यों है जरूरी? विश्व महासागर दिवस पर ये सबसे बड़ी चर्चा अब एक साथ करेंगे। आज है 8 जून वर्ल्ड ओशियंस डे, यानी विश्व महासागर दिवस। यह केवल समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का दिन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति का दिन है साथियों, क्योंकि महासागर हम सब की सांसों, भोजन और जलवायु से जुड़े हुए हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि पृथ्वी की लगभग 70% सतह महासागरों से ढकी हुई है और हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन का कम से कम आधा हिस्सा महासागर प्रदान करते हैं। अरबों लोगों के भोजन और आजीविका का आधार भी समुद्र ही है। जब समुद्र की बात हो रही है, विश्व समुद्र दिवस, महासागर दिवस की बात हो रही है, तो विश्व महासागर दिवस की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में इस विचार को रखा गया। बाद में 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये कि महासागरों को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कारण साफ है भाई, प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़ी मछलियों की कई आबादियां बुरी तरह से प्रभावित

साथियों, जहां सागर की लहरों में छिपा है जीवन का संगीत, तो आइए दिल से सुनते हैं दिल की यही पुकार। जहां लहरें किनारों से मिलती हैं, वहीं दिल अपने जज्बातों को आवाज देता है। विश्व महासागर दिवस पर सागर की गहराइयों और दिल की तन्हाइयों को जोड़ता ये खूबसूरत सा नगमा हमने आपके लिए रखा है। नीला समंदर, सुनहरा किनारा और धड़कनों की मीठी पुकार, पेश है ये सदाबहार गीत जो सागर हमें जीवन देता है और संगीत उसे एहसासों की लहरों में बदल देता है। अब आइए सागर की लहरों के पास बैठने का आनंद लें, अनुभव करें, साथ में कहते जाएं अपने दोस्त माणिक के साथ हेलो हजारीबाग। महासागर की अनंत गहराइयों को सलाम करते हुए हम सभी सुन रहे हैं ये गीत।

हेलो हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी। आज है विश्व महासागर दिवस और हम बात कर रहे हैं कि महासागर क्यों है जरूरी। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो कम कीजिए। नदियों और तालाबों में कचरा ना डालिए। जल संरक्षण कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक कीजिए। प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनिए। याद रखिए हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। स्वच्छ हवा, संतुलित जलवायु और जैव विविधता का भविष्य महासागरों से ही तो जुड़ा हुआ है। विश्व महासागर दिवस हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। महासागर दूर हो सकते हैं लेकिन उनका महत्व हमारी हर सांस में बसता है। तो आइए जल और जीवन की इस अनमोल धरोहर की रक्षा का आज ही के दिन संकल्प ले लें। और जब संकल्प लिया, आंखें बंद की, तो आंखों से आंखों में जब बातें आंखें बंद करके ही हो गई तो एक गीत सामने आ गया। जी हाँ, सागर जैसी आंखों वाली। गीत के लिए तो विश्व महासागर दिवस की थीम जो जुड़ी हुई है वो तो एकदम स्पष्ट नजर आती है। सागर की गहराई और आंखों की सच्चाई, दोनों का कोई और छोर नहीं होता। जब महासागर की विशालता किसी की आंखों में उतर आए तो गीत अपने आप जन्म ले लेता है। लहरों की नमी और भावनाओं की चमक लिए पेश है ये मधुर गीत। महासागर की गहराइयों को शब्दों से बांधना तो बहुत मुश्किल है और कुछ आंखें ऐसी ही होती हैं जिससे बंध जाती हैं। ये विश्व महासागर दिवस पर सागर की अथाह सुंदरता को नमन करता ये सदाबहार नगमा हमने आपके लिए चुना है। सागर केवल जल का विस्तार नहीं साथियों, भावनाओं की भी गहराई है। इन्हीं एहसासों को सुरों में पिरो देता है ये गाना।

आज विश्व महासागर दिवस है। क्यों है जरूरी, हम सब के लिए महासागर बता चुका हूं। अंतिम जो गीत आया महासागर को लेकर के, उसमें मन में कुछ बातें आई जो शेयर कर रहा हूं। लहरों का स्वभाव है बहते रहना, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो उन्हें भी ठहरने पर मजबूर कर देती है। सागर की हर लहर एक कहानी कहती है और हर कहानी में छिपा होता है किसी के आने का इंतजार। विश्व महासागर दिवस पर आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें समंदर की रवानी और दिल की नादानी साथ साथ बहती है। सागर से बस इतनी सी गुजारिश, जरा ठहरो, कुछ सुर, कुछ सपने और कुछ यादें तुम्हारे नाम करने को हैं अब हमें।

हेलो हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी अपने दोस्त माणिक के साथ। ये अब अगले पड़ाव की घोषणा। ये अगला पड़ाव है खेल की दुनिया से संबंधित बातें जानने का, अपडेट होने का। तो सबसे पहले फीफा विश्व कप 2026 की बात करें, खास हो गया है विश्व कप का हर स्टेडियम। जी हां, 16 मैदान और 16 शहरों में ये स्टेडियम। फीफा विश्व कप सिर्फ टीमों और खिलाड़ियों के कारण नहीं श्रोताओं, बल्कि अपने 16 मेजबान स्टेडियमों के कारण भी खास हो गया। 3 देशों अमेरिका, मैक्सिका और कनाडा में फैले ये मैदान इतिहास, तकनीक और मौसम की अनोखी चुनौतियों का संगम होगा। और इधर सुथार पहले ही टेस्ट मैच में चमक गए। अफगानिस्तान 113 रन पर 5 विकेट गंवाकर संकट में आ गया और मानव ने तीन और प्रसिद्ध ने 2 विकेट चटका दिए। जी हां, बल्लेबाजों के बाद अपना पहला टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने रविवार को फिरकी का जादू दिखाया। सुथार ने अपने पहले ही ओवर की 4थी गेंद पर ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लेकर जो झटका अफगानिस्तान को दिया, उससे वह उबर नहीं पाया। मेहमान टीम ने एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन मात्र 113 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। इधर हुआ विमेन प्रीमियर लीग JSCA ओवल ग्राउंड में खेले गए फाइनल में पलामू ने कोल्हान को 43 रन से हरा दिया। कोल्हान को हराकर पलामू ने जीत लिया है खिताब। अवार्ड का किया गया वितरण। और इधर झारखंड के अनूप को राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला। भारतीय 2020 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उनके बचपन से ही चुनौतियों का सामना करने का जो जुनून था वो पसंद था। हालांकि अब राष्ट्रीय टीम की कप्तानी मिलने पर का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपना ये व्यक्तित्व बदलना होगा। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को शनिवार को सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय 2020 कप्तान नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सैफ चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। भारत शनिवार बांग्लादेश को हराकर 6थी बार चैंपियन बना था। और अब बात करेंगे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में, क्योंकि आज ही आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। आकाशवाणी के 90वें स्थापना वर्ष पर सभी श्रोताओं, कलाकारों, उद्घोषकों और रेडियो परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हेलो हजारीबाग के इस मंच से। भारत में रेडियो प्रसारण की यात्रा वर्ष 1936 में आकाशवाणी के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ी थी। और आज यह देश के दूर दराज इलाकों तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का सशक्त माध्यम बना। वर्तमान में प्रसार भारती के अंतर्गत संचालित आकाशवाणी के देश भर में 500 से अधिक प्रसारण केंद्र और सैकड़ों FM तथा डिजिटल सेवाएं करोड़ों श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आधुनिक भारत की विकास यात्रा तक रेडियो ने हर सुख दुख, हर उत्सव और हर चुनौतियों में देश की आवाज बनकर लोगों को जोड़

पड़ा है। तो आइए ना आकाशवाणी के 90वें वर्ष पर हम सब संकल्प लें कि इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। मैं माणिक चक्रवर्ती हेलो हजारीबाग से आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों को नमन करते हुए आप सबों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

एक बार फिर से हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार, झारखंड नमस्कार, पूरे भारतवर्ष में मेरे प्यारे श्रोताओं को, आप सभी सुन रहे हैं अपना पसंदीदा अपडेट्स वाला कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है श्रोताओं। आज हम मना रहे हैं हमारी जन जन की आवाज, हमारे गर्व, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का महापर्व। ১৯৩৬ से लेकर ২০২৬ तक इसने न सिर्फ 90 साल देखे हैं, बल्कि 90 सालों तक भारतीय के दिलों में धड़कन बनकर गूंज रही है। इस खास मौके पर हमारे स्टूडियो में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सूचना सिर्फ खबर नहीं, वह सही समय पर मिली सटीक जानकारी है। हजारीबाग और झारखंड के संदर्भ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसान भाइयों के लिए मौसम की चेतावनी और कृषि जानकारी। मान लीजिए अचानक भारी बारिश या बाढ़ की आशंका हो, नेटवर्क चला जाए, बिजली चली जाए, लेकिन आकाशवाणी का वह ट्रांसमीटर कभी नहीं रुकता। वह गांव गांव तक पहुंचकर कहता है सावधान, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। यही नहीं, किसानवाणी कार्यक्रम के तहत हमने हजारीबाग के किसानों को उन्नत बीज, सरकारी योजनाओं और मंडी के भाव की सूचना सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से दी है। यह सूचना नहीं, यह जीवन रक्षा है। नब्बे साल के सफर में आकाशवाणी ने हमें ज्ञान भी दिया और जिंदगी के सुर भी। पेश है एक ऐसा कालजयी गीत जो हर भारतीय के दिल में बसता है, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जैसी पार्श्व गायिका की अभी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है, वो हमारे साथ अब नहीं है, तो उनकी आवाज से हम समर्पित करते हैं आज गौरवशाली वर्ष के इस 90वें साल को।

आकाशवाणी की बात हो रही है तो शिक्षा की बात कर लें कि कैसे आकाशवाणी ने उन तक पहुंचाई शिक्षा जहां स्कूल की इमारतें तक नहीं पहुंच पाई थी। जहां स्कूल की इमारतें तक नहीं पहुंच पाई वहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती थी। जी हां, आकाशवाणी ने विद्या भारती और शिक्षा समाचार जैसे कार्यक्रमों के जरिए कक्षाओं को रेडियो तरंगों पर ला दिया। हजारीबाग के दूर दराज के इलाकों में जहां स्कूल जाने तक का रास्ता कठिन था, वहां के बच्चे सुबह 8 बजे रेडियो खोलकर अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय सुनते थे। इसके अलावा वयस्क साक्षरता, एडल्ट एजुकेशन और स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रमों ने गांव की माताओं को टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता के बारे में सिखाया। जब डॉक्टर या शिक्षक वहां नहीं पहुंच सकते थे तो आकाशवाणी का माइक्रोफोन एक अदृश्य शिक्षक, जी हां, एक अदृश्य शिक्षक बनकर उनके आंगन में पहुंच जाता था। यह हमारे सबसे बड़ी शैक्षिक उपलब्धि हुई। अब आते हैं तीसरे और सबसे रंगीन पहलू पर, वो है मनोरंजन। और इसी कड़ी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कई कार्यक्रमों को, जैसे आज भी पोस्टकार्ड पर आकाशवाणी हजारीबाग कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक लिखकर अपनी पसंदीदा गीत भारत के कोने कोने से सुनते हैं कार्यक्रम आपकी चाहत में। रात्रि 10 बजते ही रजनीगंधा ट्यून हो जाता है आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जिसका प्रसारण रात्रि 10 बजे होता है। हमारे तो एक श्रोता जो हैं बरही से रमेश जी, वो कहते हैं कि बचपन से ही आकाशवाणी रेडियो का दीवाना हूं। मेरे दादाजी कहते थे कि पहले हवाई अड्डा रेडियो पर ही हमें भजन, कवि सम्मेलन और नाटिकाएं सुनाई पड़ती थी। हजारीबाग के स्थानीय कलाकारों को, खासकर हमारे छऊ नृत्य और जन गायक गायकों को पहली बार राष्ट्रीय मंच पर आकाशवाणी ने ही जगह दिया। आज भी शाम को जब संगीत सरोवर या कोई पुराना गीत जैसे फिल्म संगीत के अंतर्गत बजता है तो पूरा परिवार चुपचाप बैठकर सुनता है। यह मनोरंजन नहीं, यह हमारी संस्कृति की धरोहर है। अपने विरासत से जुड़ने का ही मतलब है रेडियो से जुड़े रहना।

आप सभी श्रोताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए ये हमने आज जाना कि कैसे आकाशवाणी ने सूचना का स्रोत, शिक्षा का दीपक और मनोरंजन का अक्षय पात्र बनकर 90 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन किया है। आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र की ओर से आज हेलो हजारीबाग में मैं सूत्रधार की तरह आप सभी श्रोताओं को 90वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। याद रखिए, सत्यमेव जयते। नमस्कार।

सुमन कल्याणपुर ने जब लगभग ये अंतिम गीत नसीब फिल्म के लिए गाया तो रेडियो में जब ये गीत प्रसारित हुआ, सुनने वालों ने जो दिल से इसमें अपनी धड़कन जोड़ दी और सुमन कल्याणपुर ने जैसे दिल उतार कर रख दिया।

देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें अब इसी गीत के साथ साथ सुनते जाइए। आज ईरान युद्ध को 100वां दिन हो रहा है। अमेरिकी इजराइल के व ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई यह जंग का असर जो है वो दुनिया भर के रसोई, पेट्रोल, शेयर बाजार, हवाई किराए और समुद्री तट तक पहुंचकर समुद्री जो हॉर्मुज है वहां तक पहुंच गया है। युद्ध हॉर्मुज संकट से 146 देशों में तेल महंगाई की आग हो गई है। दुनिया को 474 लाख करोड़ की चोट पहुंची है अभी तक।

भारत आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने रविवार को साफ कर दिया कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाने का समर्थन किया। और इधर ट्रंप के एआई सलाहकार श्री राम कृष्णन छोड़ेंगे पद।

कुछ ही मिनटों का अब सफर रह गया। एक घंटे का ये सफर अब देखिए कुछ ही मिनटों में समेट गया। झारखंड, पूरे भारत के मेरे प्यारे श्रोताओं, आज का दिन इतिहास है क्योंकि आज 90वां गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं हम आकाशवाणी में। पूरे भारत के में ये मनाया जा रहा है, लेकिन कल एक नई शुरुआत हुई कि हम वादा करते हैं चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारी आवाज में वो अपनापन, वो विश्वास, वो मर्यादा कभी नहीं बदलेगी। श्रोताओं, हम आप हमारे दिल में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी का ये सफर आपके प्यार से ही तो है। हर श्रोता एक परिवार, हर आवाज एक उपहार। 90 साल बीत गए मगर ये एहसास वही है, आप हमारे हो, हम आपके हैं, यही सबसे बड़ा संसार है।

लीजिए, अब कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही मिनट का ये सिलसिला है हेलो हजारीबाग का। शुरुआत में हमने सुविचार कहा था, उससे ही अब कार्यक्रम की

0: समाप्ति करते हैं। सूरज श्रोताओं हर दिन उगता है, इसलिए जीवन में नई शुरुआत करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है वह दुनिया बदल देता है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका है, जो है उसका सम्मान कीजिए और जो नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए। और इसी सुविचार के साथ अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को आज के हेलो हजारीबाग से अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे कई अपडेट्स लेकर फिर कल सुबह, और रोज ही नए अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे, और साथ में एक साथ घर संसार की तरह मिलकर आगे बढ़ाएंगे इस देश को और इसके युवाओं को। नमस्कार, जोहार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

हेलो हजारीबाग, सुन रहे थे आप सभी, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सभी विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें, इन्हीं का संगीत, शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन, एल्बम का नाम तस्वीर।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
4: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
3: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर कार्यक्रम, आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आंखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहां पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं।

मन्ना डे की आवाज में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है। अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड, वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता। इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और से सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव, विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका, डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल, जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई, कहा सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की यह यात्रा मानवीय सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इंडी गठबंधन ने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
1: हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या है और 2 प्रत्याशियों के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है उसके बारे में बताएं। इनके विधायकों को इन लोगों ने बंधक रख लिया है, बिना कैंडिडेट का नाम बताए जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है यहाँ लोगों के सामने।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सचेतक नवीन जायसवाल के आवास में आज भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे परिमल नाथवानी भी शामिल हुए। इधर भाजपा भी एक सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी गणित भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे।
2: यकीन मानिए हमारा फोकस है कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस ने जिस बाहरी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दे दिया जिसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं, उसको हम लोग यहाँ से विदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव खेलेगी ना, यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड अंतिम में खोलेगी और एक चीज पक्का है, हम जीतेंगे कांग्रेस हारेगी।
0: रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जिले में तैनात सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पुलिसकर्मी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी ने पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
3: रांची जिला अंतर्गत जितने पीसीआर और हाईवे और नाइट पेट्रोल में ड्यूटी करते हैं पदाधिकारी और जवान ड्राइवर, उन सभी का एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें सभी को उनके दायित्व के बारे में बताया गया। किसी भी तरह का अगर आपराधिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई असामाजिक कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति इंटेलिजेंस डेवलप करना।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 जून को 10 वर्ष पूरे होने पर कल राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगेंगे, साथ ही जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और एफआरयू में विशेष पीएमएसएमए सत्र चलाकर गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और परामर्श किया जाएगा।

0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 73,735 पर और निफ्टी 159 अंक गिरकर 23,207 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ जीतवाहन उराव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
2: 3 बच्चों की हत्या हुई है, जो पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो कमजोर भी है, उनसे द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोगों को जांच शुरू कर रहे हैं।
0: गिरिडीह जिले में योग के नियमित आयोजन से लोग निरोग हो रहे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से सालों भर योग का नियमित शिविर लगाकर लोगों को निरोग किया जा रहा है। योग करने वालों ने स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में योग के फायदे बताए।
3: मैं योगा में 2 साल से आ रही हूँ। योग करने से बहुत ही फायदा होता है। पहले शुगर 400 था और अभी मेरा शुगर 125 है। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही जरूरी है।
4: बहुत से बीमारियों से ग्रस्त है, अब हमें बहुत उसमें आराम मिल रहा है। मैं संदेश दूंगा कि आप योग से निरंतर जुड़े रहें और आज जो वर्तमान समय में लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाओं पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो योग से ही छुटकारा मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है और मैं आगे निरंतर योग करता रहूंगा।
0: सीबीएसई और एनसीईआरटी की पहल पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से 18 जून 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन 10 जून तक होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव। विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका। डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल। जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। कहा, सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम

सागर, जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है, तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही है फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक का हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र, सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य, स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो, सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है, जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी। हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे। और हमारी बातें अधूरी रह गई, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है, आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है, है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम होगा।

मेरा घर सूना सूना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। मैं

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सी

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार

0: चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: साइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: अमन यादव के

0: साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम ने बताया कि पूरा गठबंधन एकजुट है और अपनी जीत पर पूरा भरोसा है।
1: अपना जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, इस विश्वास का हम नामांकन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारे गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे। और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री है और उनके लीडरशिप पर बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं।
0: उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन में एनडीए के विधायक प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नाथवानी ने कहा कि उन्होंने झारखंड में पहले भी काम किया है और यदि दोबारा अवसर मिलता है तो वे राज्य के लिए पहले से अधिक काम करेंगे।
2: मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी, सबका सहयोग मिलेगा तो मैं जीतने वाला ही हूँ। झारखंड के लिए मैंने कहा काम किया हुआ है, मेरा दो टर्म आपने देखा है, उससे ज्यादा ही होगा। मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाई थी, आईएम भी बनाया था, तो ये सब मेरा काम तो इधर है ही सबके सामने।
0: रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने माना कि मामले में विचारण के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इस स्तर पर आरोप समाप्त करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2025 में याचिका दायर कर खुद को मामले से मुक्त करने की मांग की थी। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। दोनों आरोपियों पर अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के एजेंट होने का आरोप है। मामले में अब तक 160 से अधिक अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि गिरोह से जुड़े कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को

आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई जा रही ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोडरमा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप में सतगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की है। साथ ही उन्हें तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है गहरा समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ

0: सेकेंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, वो गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाता है जो उसको दूषित कर देता है पानी
0: और आपको वापस देता भी है,
1: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
0: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। हाँ, मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
1: संदेश देता है।
0: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए।
0: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
1: जी,
0: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
1: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने
0: बता ही दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: के दिन में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो

0: वो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में

वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है।
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच।
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।

0: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
1: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया।

0: ना जाने वो कहां है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल

0: साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
1: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
0: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आते शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
0: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और

0: ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है। जो
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: ना कुछ कहने वाले
0: अरे, आपने मुझे बोल ही नहीं दे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से
1: मतलब
0: ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से

0: ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार इसने बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिख करके
1: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
0: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोले और चिंता में और गुस्से में न बोले। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी
1: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: करना है।
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप
2: हमें
1: कल
2: ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा। और तपाक से तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते
1: ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो
1: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
2: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं।
1: इसकी
2: सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
2: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाए ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाए, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
2: जी।
1: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था स्वास्थ्य सेवाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहत नामा कार्यक्रम में आप
1: अब
0: सभी
1: तक
0: का
1: के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उनके उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। वहीं भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि एनडीए के विधायक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए मतदान करेंगे। नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन और सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
2: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
2: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिट

0: हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो।
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है। थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं

0: उपयोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ जाता है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: वो दूर हो जाता टेंशन है। होती।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण है, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में है, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी, सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है।
1: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या?
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अभी शाम के 4:30 और 12 सेकंड्स हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार चार दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी
3: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए

0: मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया?
1: नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी।
0: तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेद दिन से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
4: हाँ हाँ,
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ,
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने

0: अभी जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है, चल
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली, लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धनशोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के तांबा गांव के पास छापेमारी कर लगभग 12 लाख रुपए मूल्य की करीब 2 किलो अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला स्थापना सह अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य अनुकंपा नियुक्ति के 2 मामले में से 1 को स्वीकृति दी गई, जबकि दूसरे मामले को जांच रिपोर्ट के बाद अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: कार्यक्रम का आगाज आइए करते हैं फिल्म बॉबी के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने।
3: तुम
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आइए इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

किशोर कुमार की आवाज में वारंट फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए श्वेता को इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 और 50 सेकंड्स हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी श्रोता सब के मीनाक्षी बहन के दने से जोहार प्रणाम और सभी के अपन कार्यक्रम में स्वागत हन। और हमरा उम्मीद है कि देखा तो इन सभन के हालचाल भी बेसे होते और हम इन सब भी जब भी आवो ही है ढेरे मनी जानकारी लेके आवो ही है और ढेरे मनी विषय पर बातचीत भी करो ही है। एकर पहले हम इन अपन बातचीत के आगू बढ़िए, ओकर पहले सुनो ही है जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: तो जरूरी संदेश के बाद हम इन अपन बातचीत के आगे बढ़िए। तो देखा हम इनकर किसान भाई सबिन तो बेस्तरी से खेती करबे करो हथिन, मगर कभी कभी देखा कि पोषक तत्व कर अभाव में देखा कि पौधा सबिन के जे तरी से विकास हुए के चाही उ ना हुए है। एकर में देखा कि हो जा है कि पोषक तत्व के अभाव हो जा है, जेकर से हम उनके जे पौधा सबिन हुए है ओकर जे तरी से विकास होवे के चाही उ ना हुए है। ऐसे में जरूरी है कि हम इन ऐसन तकनीक या प्रबंधन के इस्तेमाल करिए जेकर से हम इनके पौधा सबिन के जे जरूरी पोषक तत्व मिले के चाही वो मिल सके। एकरे ही हम इन एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहिए। ये ऐसन खेती के पद्धति है जेकर में पौधा सबिन के खातिर जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन होलो, फास्फोरस होलो और पोटास होलो, एकर साथे साथे रासायनिक उर्वरक के साथ जैविक खाद जैसे गोबर के खाद होलो, कंपोस्ट खाद होलो और जैव उर्वरक होलो जैसे राइजोबियम होलो, ये सभी पोषक तत्व माटी में डाले के चाही, जेकर से माटी के सेहत भी बेस रहते और फसल के पैदावार भी बेस होते। एकर से कैगो लाभ भी मिलो है, जैसे कि देखा कि हम इनकर श्रोता सभी सोचित होते हैं कि प्रबंधन काहे के लिए जरूरी है। तो देखा कि एकर से पौधा सभी के संतुलित पोषण पोषक तत्व मिलो है जो पौधा सभी के विकास खातिर जरूरी हो है, जैसे कि हम उनकर विकास और वृद्धि खातिर और स्वास्थ्य खातिर भोजन जरूरी हो है, वैसे पौधा सबके विकास खातिर पोषक तत्व जरूरी हो है। ऐसे तो कई गो पोषक तत्व देखा कि पौधा सभी के पानी, हवा और सूरज का रोशनी और माटी से मिल जाए है, मगर देखा कि पौधा सभी के खातिर ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व के जरूरी हो है। माटी में देखा कि 13 प्रकार के देखा कि सूक्ष्म पोषक तत्व पावल जाए है, जैसे कि देखा कि लोहा हो गलो, तांबा हो लो, जस्ता हो लो, क्लोरीन हो लो, बोरॉन हो लो, मैगनीज हो लो, ये सब हो है जे सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व कहल जा है जे उकरा माटी के जरिए मिल जा है। और एकर अलावे देखा कि बृहत पोषक तत्व भी आवो है जेकर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब है आवो हथिन। एकर से भी देखा कि पोषक तत्व के कमी होवे से पौधा सबके बढ़ावार जो है वो बाधित हुए है और पौधा सभी में देखा कि इस सब पोषक तत्व के कमी होवे से ओकर में जे रोग से लड़े के क्षमता हुआ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हुआ है वो घटो है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन सब पोषक तत्व हमें अपन पौधा सबके दिए माटी में दिए ताकि हम इनके पौधा सब बढ़िया से ओकर विकास हो सके। और देखा कि ये माटी में पोषक तत्व के सही मात्रा दिए से और ओकर फसल के आवश्यक कर बीच देखा कि डाले से ओकर संतुलन बनल रहो है, पोषक तत्व के संतुलन जेकर से ओकर बढ़वार बढ़िया तरीके से हुआ है। फसल के सही मात्रा में पोषक तत्व इस्तेमाल करे से देखा कि वो ज्यादा से ज्यादा हम इनके फसल के उत्पादन बढ़िया हो सको है। और देखा कि एकर कई गो फायदा भी है कि देखा कि माटी के उर्वरता भी देखा कि सुधरो है पोषक तत्व डाले से। देखा कि हम इनके माटी सुधरल रहते तो हम इनके पौधा सबके भी विकास बड़ी बढ़िया से होते, रासायनिक उर्वरक पे जो लागत लगो है वो कम होते हैं, एकर अलावे पौधा के संतुलित पोषण मिलते हैं और साथे साथे देखा कि हम इनके माटी में नमी धारण करे के क्षमता भी बनल रहते हैं। तो आगे भी देखा कि हम इन बातचीत करबे कर रहे, लेकिन पहले सुनो ही ये गीत।

0: तो देखा, हमरा उम्मीद है कि जानकारी जरूर बेस लग गीत जरूर बेस लगले होते, और अब जानकारी के देने हम इन बढ़ो ही है। और देखा हम इनके खेती के क्षेत्र में देखा कि महिला सबके भागीदारी काफी बढ़ रहल है। देखा कि बीज बोवे से लेकर के फसल के बाजार तक पहुंचावे में तक देखा कि उनकर काफी भागीदारी रहो है। और देखा कि हम इनके देश में 42% हिस्सा देखा कि हम इनके कृषि के कार्यबल में लगभग उनकर 42% हिस्सा हो तक, जेकर से हम इन खेती बाड़ी हम इन करो ही है। और ये हम इनके खेती के रीढ़ भी मानल जा हथिन। खेती में देखा कि खेत में देखा कि बीज डाले से ले करके देखा धान के रोपाई करे तक जैसन कार्य के महिला सबन आगे रहो हथिन। और देखा कि फसल के सुरक्षा खातिर भी देखा कि जैसे कि तू देखबा कि हम इन जे भी फसल लगावे है ओकर में देखा कि घास फूस उग जा हथिन, तो ओकर समय से निराई गुड़ाई करे में भी जे श्रम लगो है वो हम इनकर घर के महिला सभन ही करो हथिन। और एकर अलावे देखा कि महिला सभन जैविक खाद डाले में पौधा सबके नियमित सिंचाई करे में के काम भी काफी बखूबी तरीके से निभाओ हथिन। और कटाई के बाद देखा कि अनाज के सुरक्षित रखे खातिर और ओकरा कीट से बचावे खातिर भी देखा कि और पारंपरिक तरीका उपयोग करो हथिन। गेहूं होलो, धान होलो या कई प्रकार के फसल के कटाई हो, एकरो में भी देखबा तू कि महिला सबके योग्य जे भागीदारी हो है वो सबसे बेसी हो है। और गाय भैंस या देखा कि घर में देखा कि मुर्गी पालन करो हथिन जे या गौ पालन करो हथिन, ओकर में भी देखा या फिर देखा कि कई प्रकार के कृषि कार्य जे हो है ओकर में देखा कि ज्यादा से ज्यादा योगदान देखा कि महिला सब दे हथिन और ओकर से जुड़ल हथिन। एकर अलावे देखा कि जे भी कृषि उत्पाद बनावल जाए है ओकर में भी देखा कि सब महिला किसान सब इन अचार बनाओ हथिन, पापड़ बनाओ हथिन और देखा कि कई प्रकार के मसाला बना करके देखा कि अपन अतिरिक्त आमदनी कमाओ हथिन और एकर में आगे भी हथिन। कई किसान महिला किसान हथिन कि महिला मंडल बना करके भी देखा कि अचार पापड़ के रोजगार बना करके सत्तू बना करके देखवा कि तू गांव में मकई के सत्तू भी मिलो है ओकरो बना करके ओकरा बेचो हथिन और आमदनी प्राप्त करो हथिन। और देखा एकर अलावे मछली पालन करे में मधुमक्खी पालन करे में भी जैसन कै को व्यवसाय हो है ओकर में भी देखबा कि महिला सभन के भागीदारी काफी बढ़ रहल है। एहने कहल जा सको है न कि महिला सभन जे हथिन हम इनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल हथिन। और एकर आगे हम इन बातचीत में बनल रहबे जे हम इन जानकारी ले ले हिए उ सुना दियल जाए। तो देखा कि आज हम इन जे जानकारी ले लिए ही है कि मक्का के उन्नत के खेती का के बारे में देखा और जानकारी देते थे दर्शन प्रसाद कुशवाहा और उन तो ये जानकारी सुनल जाए उनका अनुभव सुनल जाए।
1: श्रोताओं आज हमारे बीच हैं एक सफल किसान जो काफी अच्छी तरीके से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं। तो आपका नाम?
2: मेरा नाम हुआ दर्शन प्रसाद कुशवाहा।
1: दर्शन प्रसाद कुशवाहा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: बड़का गांव।
1: बड़का गांव।
2: हाँ।
1: आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से?
2: मिडिल तक तो पढ़े हैं बड़के गांव में और मिडिल के पास चल गए थे हजारीबाग।
1: अच्छा, हजारीबाग से पढ़ाई हुई।
2: हाँ।
1: तो आप खेती बाड़ी के कामों से कब से जुड़े?
2: वो पढ़ाई करते हुए खेती बाड़ी में जुड़े हुए रहते।
1: अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी का काम कर रहे थे?
2: कर रहे थे। हाँ।
1: और मुझे ये बताइए कि अभी आप अपने खेतों में क्या क्या लगाए हुए हैं, क्या क्या निकल रहा है?
2: अभी लगाए हुए हैं टमाटर जो कि फूल और फल पर है तैयार,
1: मतलब फल देने की
2: तैयारी में, फल भी दे चुका है, तोड़ने की तैयारी में है।
1: अच्छा, तोड़ने की तैयारी।
2: हाँ।
1: और
2: लौकी है, लौकी है, निकल रहा है एक रोज छोड़ करके एक रोज। परवर है, परवर है जो कि वो भी एक रोज छोड़ के एक रोज निकल रहा है। मकई एक बार बेच चुके।
1: अच्छा, एक बार लगा के तैयार हो के बेच दिए? बेच,
2: आज से 15-20 दिन पहले मकई बेच दिए और वो मुझे अच्छा पैसा दी। और फिर अभी मकई थोड़ा सा लगा हुआ है जो कि फाड़ करके बेचना है।
1: अच्छा, वो भी तैयार है?
2: वो भी तैयार है।
1: और फिर अभी बरसाती मक्के लगाने का भी तैयारी कर रहे हैं?
2: लगा दिए हैं।
1: अच्छा, लगा
2: और
1: लगा,
2: हाँ और लगाना है।
1: अच्छा, और लगाना
2: 3 केजी दाना हम लगा चुके हैं और लगभग 10 केजी दाना लगा।
1: तो मुझे ये बताइए कि जो आप मक्के लगाए हैं, जो निकल गया, फिर अभी बरसाती मक्के लगा दिए हैं, तो उस जमीन की तैयारी कैसे की?
2: जमीन की तैयारी किए, पहले जुताई किए, जुताई बढ़िया से कर लिए, उसके बाद उसको
1: जुताई के लिए क्या हल बैल इस्तेमाल
2: करते हैं? ट्रैक्टर से।
1: ट्रैक्टर से?
2: ट्रैक्टर से, हाँ।
1: अच्छा, मतलब मिट्टी को काफी भुरभुरा कर दिया?
2: हाँ, भुरभुरा कर दिए और उसको आर बना दिए। आर बना करके डीएपी खाद है और भू सुधा खाद दोनों मिला के एक में

0: मिला दिए और मिला करके उस एक अंजाद से उसको जमीन में पहले डाल दिए और डाल देने के बाद उसको उसी पर मकई रोप दिए हैं और पटा दिए हैं तो अभी मकई जन्मा, उसके बाद घास भी जन्म गया है। तो घास
1: में निकाई भी करते होंगे?
0: निकाई नहीं, उसको दवा निकला हुआ है, दवा डालना है,
1: दवा डाल देते हैं तो घास
0: मर जाएगा और मकई एक कोड़न से बच जाते हैं। फिर मकई को हमको खाली जो किनारे में लगा है उसको बीच में कर देने से मकई और यूरिया खाद,
1: जो आप मकई लगाए हैं तो मतलब उसको तुरंत पटा देते हैं बीजा डालने के बाद?
0: नहीं, एक रोज के बाद।
1: एक रोज के बाद? अच्छा, और ये जो बीजा लगाते हैं वो कितनी दूरी पे लगाते हैं?
0: वो लगाते हैं डेढ़ फीट।
1: हाँ,
0: डेढ़ फीट बाई डेढ़ फीट पर एक दाना।
1: अच्छा, तो ये जो आपका मकई है वो कितने दिनों में बाहर आ जाता है, जन्म के उसके जन्मेशन
0: कितने
1: दिनों में हो जाता है?
0: 90 दिन।
1: 90 दिन?
0: 90 दिन या 100 दिन, 100।
1: मतलब वो तो तैयार होना हुआ, मकई तैयार हो जाने के, लेकिन वो जन्मता एक सप्ताह में जन्मता है कि 15 दिन?
0: नहीं, एक सप्ताह के अंदर में जन्म
1: जाता है। एक सप्ताह के अंदर में
0: जन्म जाता है।
1: तो मतलब जब आप लोग कोड़न देते हैं तो वो कितना बड़ा हो जाने पर वो कोड़न देते हैं?
0: कोड़न उसको पहले हम लोग कोड़ते थे 5 इंची, लगभग 4-5 इंची हो जाता था, 5 इंची 6 इंची।
1: तो 5 इंची मतलब कहने का अर्थ है कि 4-5 पत्ता हो गया तो कोड़ते?
0: हाँ, 4-5 पत्ता कोड़ते थे। अब तो ऐसा टेक्निक निकल गया है कि रोप देते हैं और उसके बाद पटा देते हैं, जन्म जाता है, जन्म जाने के बाद फिर उसमें घास रहने पर दवा मार देते हैं और मकई को एक बार बीच में कर देते हैं। और
1: अच्छा, मतलब उसको कोड़न करके एक बार पात बनाते हैं?
0: पात, हाँ, और बीच में करके पानी देते रहते हैं, यूरिया 2-3 बार देना पड़ता है
1: तो उसका बढ़वार अच्छा होता है।
0: अच्छा होता है।
1: अच्छा, मतलब जल्दी बढ़वार तैयार हो जाता है मकई, कहने का मतलब?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अच्छा, तो ये मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि 90 दिनों में तैयार हो जाता है।
0: हाँ।
1: तो क्या इसमें मकई में कोई रोग वगैरह भी लगता है क्या?
0: हाँ, रोग वगैरह तो लगता है, जैसे अभी गर्मी पड़ गया है ना, अभी कीड़ा ज्यादा मारता है छोटा मकई।
1: हाँ, हाँ।
0: और पानी पड़ने पर कीड़ा कम मारता
1: है। कीड़ा लग जाता है तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं?
0: उसको कीटनाशक दवा, बीज या दवा दुकान से जा करके ले लेते हैं और डालते हैं, और डालने के बाद ठीक रहता है, पानी ज्यादा खोजता है गर्मी।
1: तो कितने दिनों में अंतराल में पटाते हैं पानी?
0: एक सप्ताह। हाँ, एक सप्ताह, 8 दिन 10 दिन पर।
1: कई बार ऐसा भी देखा गया है मकई जब आ जाता है तो उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, दाना खराब कर देता है।
0: हाँ, वो पानी पड़ने के बाद कुछ कीड़ा लग जाता है, उस समय दवा नहीं दे पाते, जब तैयार होता है ना तो उसको फाड़ देते हैं, फाड़ करके
1: हटा देते हैं।
0: हाँ, उसको तोड़ कर निकाल देते हैं।
1: मतलब 90 दिनों में वो तैयार हो जाता है?
0: हाँ, 90 दिनों, 110 दिन, 15 दिन पर तोड़ कर
1: तैयार हो
0: जाता। मकई का भी दाना दो तरह से होता है, एक तो कहते हैं लोमन, एक का कहते हैं जड़ा। लोमन जो है वो जल्दी मकई तैयार होता है और जड़न के मतलब वो थोड़ा 10 दिन ज्यादा टाइम लगता है।
1: अच्छा, 10 से 15 दिन ज्यादा
0: टाइम? ज्यादा टाइम।
1: मतलब आप मकई में जो प्रजाति आप बता रहे हैं ये दो तरह का होता है, तो आप सफेद वाला मकई लगाते हैं या पीला पीला दाना वाला लगाते
0: हैं? लगाते तो हैं दोनों, लेकिन अभी सफेद वाला दाना मिलता ही नहीं है।
1: अच्छा, अभी मिल ही नहीं रहा है?
0: मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो पीला ही वाला,
1: पीला वाला में ही वो जल्दी हो जाने वाला प्रजाति होता है और एक देरी से होने वाला प्रजाति। हाँ। ना, तो आप अभी जल्दी लगा होने वाला प्रजाति लगा रहे हैं?
0: वो तो दोनों लगता है,
1: दोनों तरह का लगता है। मतलब अभी बरसात
0: और दाना है सो दो तरह से होता है, एक स्वीट कॉर्नर जो दाना है।
1: मैं स्वीट कॉर्न मकई क्या उसको भी लगाए हैं क्या?
0: हाँ, लगाए हैं।
1: तो उसके लिए भी यही तरीका है या इसके लिए अलग?
0: नहीं, यही तरीका है,
1: इसी तरीके से आप उसको भी लगाते हैं। तो दोनों को जब तैयार हो जाने के बाद जब बेचते हैं तो दोनों की जो बिक्री में क्या अंतर आपको दिखाई देता है?
0: स्वीट कॉर्नर बिक्री का जो खाने का समझ गया उसको, वो तो स्वीट कॉर्नर मकई खरीद लेगा।
1: अच्छा, स्वीट कॉर्नर खरीद लेगा।
0: हाँ, और जो नहीं उसको खाने का तरीका जानता है वो तो जो इधर का मकई है वो पका कर खाता है।
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन स्वीट कॉर्नर जो है वो पका के खाने का मकई नहीं
1: उसको
0: है,
1: उबाल के,
0: उसको उबाल के खाने
1: का। अच्छा, तो इसके अलावा ये बताइए कि आप क्या लगाए हुए हैं
0: और अभी
1: साथी फसल लगाने की तैयारी में
0: है? हाँ, तैयारी में है, बारिश हो रहा है जिसके चलते खेत का जोताई भी कुछ किए हैं, कुछ करना है, तो अगर 8 से 15 दिन के अंदर में ये खेती लगना शुरू हो जाएगा। हाँ
1: मतलब अब नकदी फसल आप ज्यादा करते हैं क्या?
0: हाँ नकदी फसल भी करते हैं।
1: मतलब कि जैसे कि अभी बरसाती सब्जी लगेंगे तो बरसाती कद्दू भी लगाएंगे?
0: हाँ कद्दू भी लगाएंगे।
1: बरसाती नेनुआ झींगा सब लगाएंगे?
0: सब लगाएंगे। टमाटर

0: मटर भी लगाएंगे।
1: तो जो आप बरसाती कद्दू लगाते हैं तो वो क्या आप पांत बना के लगाते हैं या फिर उस क्या कहते हैं आप लोग थाला मारना की तरह या गड्ढा एक जगह बना करके रोपते हैं?
0: नहीं, उसको भी हल्का सा पांत बना देने के बाद रोपने में ठीक रहता है, लेकिन बरसाती कद्दू भी है, उसको आर बना करके ही लगाते
1: हैं। पानी पटाने में सुविधा
0: होता है, कभी उग जाने के बाद सुविधा होता है।
1: तो जैसे आप लगाए तो कई बार देखते हैं कि कद्दू जब जन्मता है उसके बाद अचानक से ही वो मर भी जाता है,
0: उसके बचाव के लिए एक दवा आता है पाउडर, उसको जल के चारों तरफ दे देते हैं, कीड़ा उसको बर्बाद,
1: तो उससे बच जाता है,
0: बच जाता
1: है। मतलब जड़ गलने का समस्या नहीं होता। कई बार देखे हैं कि कई लोग कहते हैं कि का ऊपर वाला खोद देने से वो ज्यादा लर फैलता है, ऐसा भी होता है?
0: हाँ, ऐसा
1: कद्दू ज्यादा फलने का ये होता है कि क्या होता है
0: वो खोदने के बाद लर ज्यादा चलता है, जहाँ से खुटाता है वहाँ से लर ज्यादा पीता है, लेकिन खुटाता कम है, इसलिए कि कद्दू का अपने इतना डाढ़ पात चलता है ना कि उसको खोटने की जरूरत नहीं पड़ता।
1: अच्छा, उसको खोटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मुझे ये बताइए कि उस कई बार होता क्या है कि फूल तो आता है लेकिन फल ही नहीं लगता, तो फिर वैसे में क्या करते हैं आप?
0: वैसे में फल फूल का एक दवा आता है, दवा तो कई तरह का है, लेकिन हम लोग मीराकलोन दवा जो है फल फूल फल फूल के लिए डालते,
1: उससे वो फल लगने लग
0: जाता है। लगने लग
1: इससे कैसे पहचानते हैं आप लोग कि वो फल आ रहा है? क्योंकि कई बार तो फूल आता है दिखता है लेकिन उसके साथ फल नहीं रहता है।
0: गाछ जब देखते हैं ना तो अपने वो पहले छोटा गुंडी टाइप के निकलता है।
1: अच्छा, वो फल लेते हुए आता है?
0: हाँ, फल लेते हुए निकलता है, उसी से पता चलता है कि।
1: तो इसमें भी कई रोग लग जाता है?
0: हाँ, रोग तो लगता है, रोग लगता है उसमें भी, लेकिन उसका भी दवा डाल करके।
1: जैसे बरसात कद्दू लगाए तो आप झाँक भी देते होंगे?
0: हाँ, बरसाती कद्दू में झाँक देना जरूरी है, नहीं झाँक देने के बाद कद्दू जमीन में रहता है तो
1: खराब हो जाता है। अच्छा, तो वो झाँक देते हैं तो उससे आपका कद्दू का बचाव होता है। तो आप फसल लगाते हैं तो जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर रासायनिक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? जैविक में हो गया जैसे केचुआ खाद हो गया, गोबर खाद हो गया।
0: हम तो अभी गोबर का महंगाई दे करके जैविक खाद जो केचुआ वाला है ना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा, केचुआ खाद का ज्यादा। अच्छा, आपने कहीं खेती करने के प्रशिक्षण लिया है?
0: प्रशिक्षण तो लिए थे।
1: करके खेती बाड़ी करना आसान हो जाता है ना?
0: आसान हो जाता है।
1: तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी कहा कि टमाटर भी लगाए हैं और उसका फूल आ रहा है, फल भी आ रहा है, तो उसे कब लगाए थे?
0: उसको लगाए थे, डेट तो हमको याद नहीं है, लेकिन
1: दो महीना पहले तो लगाए हमने।
0: हाँ, दो महीना पहले लगाया। हाँ,
1: तो वो तैयार हो रहा है बाजार, मतलब आपका बाजार?
0: हाँ, 15 दिन में बाजार टमाटर चल रहा
1: है। मतलब आपके जो ये जो फसल होता है तो उसकी बाजार की व्यवस्था आपके यही बड़के गांव में है?
0: लोकल है, बड़के
1: लोकल में है।
0: हम,
1: और अगर अधिक हो जाता है तब क्या करते हैं?
0: तो व्यापार लोग आते हैं लोकल बाजार में और व्यापार लोग ले जाते।
1: अच्छा, व्यापारी लोग ही बाजार में आकर के व्यापारी लोग ही एक साथ तौला देते हैं?
0: हाँ, तौला।
1: या फिर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आप घर में ही बुला लेते हैं?
0: घर में भी बुलाते हैं, घर में ज्यादा होने के बाद घर में बुलाते हैं
1: और व्यापारी फिर
0: वहाँ से उठा के ले
1: जाते। तो दर्शन महतो जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो यही है कि खेती से लोग कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तरीका से खेती किया जाए मेरे ख्याल से अच्छा।
1: अच्छा, मतलब प्रशिक्षण लेकर के और तरीके से किया जाए और समय के अनुसार ही फसल की खेती की जाए।
0: हाँ,
1: तो ज्यादा बेहतर तरीके से लाभ होता है, काफी। हाँ, लाभ होता है।
0: हाँ।
1: तो दर्शन महतो जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हम इन सुने थलिए जानकारी और हमरा उम्मीद है कि जानकारी सभी के जरूर बेस लगले होते और जानकारी मक्का के उन्नत खेती के बारे में जानकारी दे थलथिन दर्शन प्रसाद कुशवाहा। और देखा कि अभी के जे समय बदल रहल है ओकर अनुसार अभी हम इनके अपन फसल के बचावे खातिर बहुत ज्यादा ध्यान दिए के जरूरी है और साथे साथे रासायनिक खाद के जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खाद और जीवामृत के उपयोग करे के चाहिए, जेकर से हम इनके फसल के उत्पादन बेस होते और हम इनके माटी के स्वास्थ्य भी बनल रहते और ओकर साथे साथे हम इन ओकर उपजाऊ क्षमता भी बनल रहते। एकर अलावे हम इनके खेती खातिर नवा नवा तकनीक के उपयोग करे के चाहिए और जेकर से हम इनका

कई प्रकार के लाभ ले सको हिए। एकर अलावे कि जैविक कीटनाशक के उपयोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे के चाहिए ताकि हम इनके जो फसल है वो बढ़िया रहते और समय समय पर माटी के जांच करवावे रहे के चाहिए। एकर से का हो है ने कि हम इनके माटी के स्वास्थ्य के पता चल जाए है, साथे साथे ओकर में का पोषक तत्व के कमी रहो है ओकर भी पता चल जाए और वो माटी में का फसल लगाइए ओकर बारे में भी पता चलो है, जेकर हम इन वो पोषक तत्व डाल के हम इन ओकरा पर पूरा कर सको ही और ओकर में का फसल उत्पादन होते बढ़िया बेस होते वो हम इनके पता चल जाते तो हम इन वह फसल लगा करके अब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सको ही। और देखा कि एक साथे साथे हम इनके पानी बचावे खातिर ड्रिप के स्प्रिंकलर के उपयोग करे के चाहिए ताकि हम इन पानी के बचत कर सको ही। और यह जानकारी के साथ अब कार्यक्रम से विदा लिए के समय हो गए हैं, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा मीनाक्षी के अनुमति देथिन। नमस्कार।

0: खेतीबारी।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 28 मतों की आवश्यकता है। रांची के पिठौरिया क्षेत्र में 2 जून को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मदनपुर निवासी फिरोज अंसारी पर हत्या की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में मामला वर्ष 2022 के एक हत्या केस में गवाही को लेकर विवाद से जुड़ा पाया गया है। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जन देव की 401वीं जयंती के मौके पर पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय परिसर में विशेष छबिल का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। धनबाद जिले में आगामी 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4,24,729 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही आप सभी बहनों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप सब? गर्मियों का मौसम लगभग बीतने को है और मानसून का प्रवेश होने को है। कुछ ही दिनों में मानसून प्रवेश कर जाएगा और मौसम परिवर्तन का जो ये समय होता है वो काफी संक्रामक बीमारियों के का समय होता है। संक्रामक बीमारियां जो है वो ज्यादा लगने की संभावना इस मौसम में होती है। ऐसे में सावधानियों और दवाओं के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी पावर यानी शरीर के शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को का भी बहुत महत्व होता है ताकि संक्रामक बीमारियां हमें ना लग सकें। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने या बनाए रखने के लिए हमें खानपान और नियमित योग की आवश्यकता होती है। अक्सर जंक फूड्स और अनियमित खानपान हमारे सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं, इसीलिए जंक फूड और अनियमित खानपान से आप जरूर बचकर रहें। योग नियमित करें जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही योग की भूमिका शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य से भी है। योग यूं तो सभी तरह के लोगों को अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए ताकि स्वस्थ और निरोग जीवन शैली अपनाया जा सके। योग की भूमिका खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस बारे में हम आपसे करेंगे कार्यक्रम में और भी बातें। फिलहाल मिलकर सुनते हैं ये गीत।

गीत के बाद आप सबका एक बार फिर से कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। बहनों, महिलाओं के लिए योग के स्वास्थ्य लाभ शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। योग मानसिक स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन और ध्यान सहित शरीर और मन दोनों का को सहारा दे सकता है। किसी भी उम्र में महिलाओं के लिए योग काफी लाभप्रद होता है। किशोरावस्था में योग महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई तरह की असहज भावनाएं महसूस होती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि वे स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें। नियमित योगाभ्यास से महिलाओं में शारीरिक तौर पर लचीलापन और हार्मोन संतुलन में मदद मिलती है। गर्भावस्था के दौरान योग का अभ्यास भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। अजन्मे बच्चे के प्रति गहरी करुणा विकसित करता है और गर्भवती महिला को आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों में भी उन्हें संतुलित बनाए रखता है और लचीलेपन को सुदृढ़ करता है। योग में शरीर की प्राकृतिक लय को सहारा देने और पोषण प्रदान करने की क्षमता होती है, जो एक महिला के जीवन के सहज चक्रों को सकारात्मक रूप से बेहतर बनाती है। नियमित योगाभ्यास मासिक धर्म की ऐंठन, अनियमित मासिक धर्म और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों जैसे चिड़चिड़ापन और थकान को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। ये PCOS जो महिलाओं में बहुत ज्यादा तेजी से अभी बढ़ रही है, उसके खतरे को भी ये दूर करती है। इसके लिए आप वज्रासन, बंध कोणासन और प्राणायाम जैसे योगाभ्यास कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और भावनात्मक तनाव कम करता है योग। यह पेल्विक क्षेत्र को मजबूत बनाता है, जिससे प्रसव प्रक्रिया आसान होती है और प्रसव के बाद शरीर को वापस आकार में लाने और ताकत प्रदान करने में भी मदद मिलती है। योगाभ्यास से महिलाओं की एक बेहद ही संवेदनशील अवस्था मेनोपोज के दौरान भी योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेनोपॉज के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन जैसे हॉट फ्लैशेस, वजन बढ़ना और मूड स्विंग वाले परिवर्तनों को योग और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायक है। इसके अलावा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं पर काम और परिवार दोनों का दबाव होता है। योग और ध्यान मन को शांत करते हैं। कॉर्टिसोल लेवल, जो तनाव वाले हार्मोन होते हैं, उन्हें वो कम करता है और डिप्रेशन, चिंता जैसी मानसिक समस्याओं से राहत दिलाते हैं योग। योग महिलाओं की कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लचीलापन लाता है और रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखता है। इसके नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। सुबह उठकर शरीर में ऊर्जा भरने और आलस्य दूर करने के लिए ताड़ासन, भुजंगासन और

0: अनुलोम विलोम जैसे आसन का नियमित अभ्यास जरूर करना चाहिए। इन्हें करने से पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मन शांत रहता है। तो बहनों, योग का महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को हम उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ पाई होंगी और योग के इन महत्वों को समझते हुए आप जरूर योग से जुड़ेंगी, नियमित योगा आप जरूर करेंगी ताकि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और इन तमाम जानकारियों के बाद अब आपको कार्यक्रम में कुछ और जानकारियों के साथ सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता। विषय है बुटीक एक अच्छा व्यवसाय। भेंटवार्ताकार हैं रिदा खान और इनसे हमारी ओर से हमारी सहयोगी बात कर रही हैं श्वेता श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इनके इस बातचीत को, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जरूरी संदेशों के बाद आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता को।
2: सखियों, सजना संवरना हर किसी को अच्छा लगता है। खूबसूरत स्टाइलिश कपड़े पहनना तो सबों को बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी कई सखियां होंगी जिनकी पसंद कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी होंगी। कपड़ों के रंगों और डिजाइनों के मामले में उनकी सहेलियां, रिश्तेदार उनकी खूब तारीफ भी करते होंगे। यहाँ तक कि कई बहनें नए कपड़े सिलवाते समय वो खुद भी अपने आइडियाज दर्जी को देकर खूबसूरत पोशाक की डिजाइनिंग में अपना रचनात्मक योगदान देती होंगी। सखियों, हमारी आज ऐसी कई बहनें हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद है और वो अपनी रचनात्मकता को घर बैठे ही किसी व्यवसाय का रूप देने की प्रबल इच्छा भी रखती होंगी। तो सखियों, आज बुटीक का व्यवसाय बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि आप बहने सिलाई कढ़ाई की इच्छा रखती हैं, तो सखियों आप इस व्यवसाय को अपना सकती हैं और घर बैठे अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रीदा खान जी, जिन्होंने बुटीक के काम को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है और अच्छी खासी आमदनी वो घर बैठे कर रही हैं। तो रीदा खान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: रीदा जी, आप सबसे पहले हमारी बहनों को बताएं कि ये बुटीक क्या है।
3: बुटीक एक छोटी सी दुकान है जो महिलाओं के लिए, जहाँ कपड़े मिलते हैं या फिर डिजाइनर कपड़े बनवाए जाते हैं।
2: रीदा जी, स्वरोजगार के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आपने बुटीक को ही क्यों चुना?
3: बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूं, और क्योंकि मैं छोटी जब थी, मैं छोटे छोटे कपड़े अपने गुड़ियों के लिए और फिर फटे जो भी घर में रहते थे, फटे हुए कपड़े ये वो मुझे सिलने का बहुत शौक था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही उसमें बहुत इस चीज में इंटरेस्ट थी, इसलिए मुझे शौक था करने का फैशन डिजाइनिंग, तो मैंने इसी चीज में अपनी रुचि दिखाई।
2: यानी कि बचपन से ही आपको शौक रहा है बुटीक के काम में। अच्छा, बुटीक बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी शुरू शुरू में?
3: जैसे कि मैंने अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया घर से ही किया, तो मुझे उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लमसम 20 से 30 हजार में हो गया, लेकिन यही चीज अगर आप मार्केट प्लेस में करोगे तो आपकी एक्सपेंस, आपके कॉस्ट और ज्यादा भागेंगे, तो उसमें 60 से आपको 70 हजार लग जाएंगे।
2: यानी कि हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाहेंगी, उन्हें 20-30 हजार रुपए में

0: बड़े मशीन्स और फिर रैक टेबल चेयर ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा अपने बुटीक के लिए। और फिर आपको शो जैसे आप एक रूम ले रहे हो तो वो एक इस तरीके से रहे कि उसके एक हिस्सा जो है वो रोड की तरफ रहे, ताकि वो लोग जो भी जा रहे हो उधर से गुजर रहे हो तो वो उसकी तरफ वो आकर्षित हो,
1: जैसे उनकी नजर
0: उनकी
1: पड़नी
0: नजर
1: चाहिए।
0: पड़नी चाहिए। क्योंकि जैसे मैनीक्वीन भी आप शोकेस में अगर डाल रहे हो, उसमें आप ड्रेस डाल रहे हो, तो ऐसे ड्रेस डालो जिससे आप जिससे लोग की नजर पड़े और वो आए उस
1: वो
0: चीज से
1: आकर्षित
0: अट्रैक्ट
1: हो।
0: हो।
1: हाँ,
0: जी
1: इसके लिए तो लाइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता होगा।
0: हाँ, आपको इसके लिए इंटीरियर भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े पे इस चीज से प्रभाव पड़ता है। जो जितनी जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उससे ड्रेस और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। और फिर आप दीवारों पे कुछ पोस्टर लगाइए, वो सारी चीज को आपको ध्यान रखना।
1: ये सबसे बहनें जो हैं वो आकर्षित होती हैं।
0: जी
1: तो अभी आपने बताया कि बुटीक खोलने के लिए एक अच्छा खासा रूम होना चाहिए, है ना, और लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि बुटीक खोलने के लिए लेटेस्ट फैशन की जानकारी होनी भी तो बहुत जरूरी होगी।
0: नॉलेज तो आपको होनी चाहिए फैशन के बारे में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये सारे फैशन को फॉलो कर सकते हैं।
1: अच्छा, आजकल तो पुराने डिजाइन भी कपड़ों के जो है ना वापस लौट रहे हैं, उनका दौर भी आ
0: हाँ,
1: रहा है।
0: वो लौट रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिजाइनर्स होते हैं वो अपना इनोवेटिव आइडियाज लगा के कुछ नया करते हैं। वो सेम चीज फॉलो अप नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इनोवेटिव और कुछ नया ही
1: नयापन आ रहा है
0: जी।
1: थोड़ा।
0: और आजकल सिर्फ फैशन कपड़ों में ही सिर्फ नहीं रह गया है, लोग चाहते हैं कि जैसे हम अगर ड्रेस जो कैरी कर रहे हैं उसके साथ हम अपना फुटवेयर भी वैसे ही पहने, हम हैंडबैग्स जो कैरी कर रहे हैं वो भी उसी टाइप डिजाइन में रहे। तो ये सारे चीज डिजाइनर्स जो होते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग किए हुए हैं और जो बुटीक है, ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं।
1: अच्छा, और भी कई बातें होंगी जिनका बहनों को ख्याल रखना होगा यदि वो इस काम को करना चाहे तो, जैसे कपड़ों की क्वालिटी का।
0: हाँ, जब आप कपड़े फैब्रिक जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स जो अलग अलग मशीन्स होते हैं, तो हर एक मशीन को जो कपड़े जिसे मतलब सिलते हैं तो वो आइडिया होना चाहिए और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए कपड़े का, ताकि वो टिकाऊ हो।
1: यहाँ एक बात हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे रीधा जी, कि ओवर प्राइजिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बिजनेस पर?
0: ओवर प्राइजिंग का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाकर नहीं किसी चीज़ को सेल करना चाहिए। और कस्टमर भी ऐसा नहीं कि फैशन फॉलो अप नहीं करे, तो उन्हें भी पता है कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, और तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ाकर भी कुछ किसी भी फैब्रिक को सेल नहीं करना।
1: हाँ, ज़्यादा प्राइस होगा तो फिर आपके पास
0: कस्टमर्स
1: कस्टमर्स कम
0: नहीं
1: आएंगे।
0: आएंगे।
1: सही बात है। अच्छा, आप हमारी बहनों को बताएं कि इस काम के लिए आपने इसका कोर्स भी किया होगा।
0: जी, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इसका कोर्स किया है, और ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होता है। जो आप ये BA बैचलर्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, ये 3 इयर्स का कोर्स है, और ऐसे ये डिप्लोमा 1 ईयर का भी कोर्स होता है। और अगर ऐसा वहाँ पे आप अवेबिलिटीज है तो निफ्ट भी है, पर्ल एकेडमी, ये सारे भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर अगर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप 6 मंथ का टेलरिंग भी आप कर सकते हैं।
1: तो हमारी जो बहनें घर बैठे इस काम को करना चाह रही हैं, तो उन्हें शॉर्ट टाइम में कौन सा कोर्स करना चाहिए?
0: उन्हें फिर टेलरिंग 6 मंथ्स का जो है वो टेलरिंग कोर्स करके इस लाइन में वो आ सकती हैं।
1: वो कहाँ से इस कोर्स को कर सकती हैं?
0: ये हर एक जगह अवेलेबल होता है।
1: अच्छा, आप तो बुटीक का काम कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खूबसूरत कपड़े, नए डिजाइन के स्टाइलिश कपड़े की बिक्री कर रही हैं। तो हमारी बहनों को ये बताइए कि आप मार्केटिंग किस तरह से करती हैं?
0: मेरे अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी आते हैं जो मेरे शॉप से ले जाते हैं कपड़े, और नहीं अगर कुछ और भी पॉसिबल होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ अपने सारे कपड़े के
1: फ्रेंड्स
0: पिक्चर्स,
1: को। हाँ,
0: और गूगल में डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, ये सारी चीज़ में डालती हूँ ताकि लोग को पता चले।
1: अच्छा, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी आमदनी हो जाती है महीने में?
0: ये डिपेंड करता है ओकेजन पे और कस्टमर पे, जब जिस मतलब जिन लोग को जब भी ज़रूरत जैसे पड़ती है उस हिसाब से वो आते हैं। तो कुछ मतलब एक दिन में कुछ ना कुछ बिक ही जाता है।
1: महीने में आपको कितनी आमदनी हो जाती होगी?
0: महीने में 20 से 30 हो जाती है आमदनी मेरी।
1: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।

0: कि 20-30 हजार रुपए आपके घर बैठे आपकी आमदनी हो जाती है इस काम से। तो रीदा खान जी, आज हमारी सखियों को आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमारी सखियां भी सोच रही होंगी इस काम को शुरू करना। तो आज हमारे कार्यक्रम में आप आई और हमारी सखियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था बुटीक एक अच्छा व्यवसाय। भेंट वार्ताकार थी रिदा खान और इनसे हमारी ओर से हमारी सहयोगी बात कर रही थी श्वेता श्रीवास्तव। तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि बुटीक से जुड़ी ये तमाम बातें आप अच्छे से समझ पाई होंगी और बुटीक से जुड़ करके अगर जिनकी इधर रुचि होगी बुटीक के कार्यों में, तो वे इस रोजगार से जुड़ करके, इस व्यवसाय से जुड़ करके अपने को आत्मनिर्भर जरूर बनाएंगी, रोजगार से जरूर जुड़ेंगी और साथ ही कुछ लोगों को प्रेरित भी करेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में थोड़ा समय और बच रहा है, तो कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इसी के साथ ही कार्यक्रम अंगना से श्वेता को दीजिए इजाजत, फिर होगी अगले कार्यक्रम में हमारी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज आइए हम कर रहे हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं हीरो फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज। एनडीए ने परिमल नाथवानी को दिया समर्थन। इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ। हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर। आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिसकर्मी। रांची में प्रशिक्षण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए 380 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान है, जबकि अब तक किसान लगभग 86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीद चुके हैं। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है।
1: हम लोग की कॉन्फिडेंस में तो कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और दो प्रत्याशी के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है उसके बारे में बताएं।
0: वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम दलित समाज से आते हैं और स्थानीय उम्मीदवार हैं, इसलिए भाजपा को भी उनका समर्थन करना चाहिए।
2: आज तक भाजपा ने कभी इस दलित को यहाँ से राज्यसभा नहीं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रतिनिधि है वैद्यनाथ राम वो स्थानीय भी है और पहली बार कोई दलित यहाँ से राज्यसभा जाएगा, तो उनको वैद्यनाथ राम जी के पक्ष में वोट करना चाहिए।
0: दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं।
3: उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी इसमें हम लोग उसके साथ रहेंगे, इसलिए कोई उचित अनुचित के बारे में सोचने की बात नहीं है। पहले ही स्पष्ट कर दिया था हमने, जैसा भी करें भाजपा के लोगों ने जो तय किया है हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम लोग बहुत होगा तो उनको अपना वोट दे रहे हैं।
0: नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
4: सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी जी पहले भी यहाँ से दो दो बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं, तो हम लोगों ने तय किया भाई एक ट्रस्टेड व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर।
0: नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग लिया। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बैनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हुए। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है।

0: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। इस परियोजना के तहत आज देवघर के सूचना भवन में जिले के थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर उनकी राय ली जा रही है, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाती है।
1: हजारीबाग सहित देश के सभी जिलों में स्वच्छता का रैंकिंग चल रहा है कि जो शहर जितना अच्छा होगा फीडबैक के आधार पर जनता जो वोट करेगी उससे उनकी रैंकिंग होगी और फिर जैसे देश में उनका नाम होगा और उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। इंदौर हमारे पल में आता है। हम चाह रहे हैं कि जो छोटे शहर में हजारीबाग गिनती होती है हजारीबाग टॉप 10 में आ जाए, इसलिए हमारा प्रयास चल रहा है।
0: राज्य भर में पोलियो मुक्त अभियान चलाया जाएगा। धनबाद जिले में भी 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4,24,729 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। सिख पंथ के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव की 401वीं शहादत के मौके पर पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय परिसर में विशेष छबिल का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। रांची के पिठौरिया क्षेत्र में 2 जून को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने

0: दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मदनपुर निवासी फिरोज अंसारी पर हत्या की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में मामला वर्ष 2022 के एक हत्या केस में गवाही को लेकर विवाद से जुड़ा पाया गया है। रांची में साइबर अपराध अनुसंधान पर 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें झारखंड पुलिस के 78 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के विशेषज्ञ डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया अपराध, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों की जांच की जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की साइबर अपराध जांच क्षमता को मजबूत बनाना है। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर लौटी रांची की नीतू कुमारी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामेगाहारा में आयोजित प्रतियोगिता में अंपायरिंग करने वाली झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर बनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, एनडीए ने परमल नाथवानी को दिया समर्थन, इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर, आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिसकर्मी, रांची में प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: प्रस्तुत है जिले में आज का

0: अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद जिले में बीते सप्ताह विधानसभा की ध्यानाकर्षण विशेष समिति की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में लंबित बीसीसीएल से जुड़े सभी सीएनटी के मामलों को एक माह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों का भी एक महीने के अंदर निपटारा करते हुए आवश्यक अनुमति देने पर सहमति बनी। समिति सदस्य निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन रैयतों की जमीन पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंप किया गया है उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
2: जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में, उसको इमीडिएटली एक महीना के अंदर दो मोजा के एटलीस्ट सुनूंगा और एक कोई मोजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है। बाकी सारा जो पेंडिंग सीएनटी एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया, ताकि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके।
1: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कल विद्यार्थियों के शैक्षणिक करियर और व्यक्तित्व विकास को लेकर धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 52 कोचिंग संस्थानों के 520 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने कहा कि आज तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आए हैं, लेकिन गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा।
3: एआई व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा, जो जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव एआई अभी तक जितना है वो नहीं समझ पाएगा, इसीलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
1: धनबाद पुलिसिंग को और प्रभावी व जवाबदेह बनाने की दिशा में बीते सप्ताह पुलिस केंद्र में विशेष ब्रीफिंग कार्यशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के एसआई स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अब तक डीएसपी, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर स्तर के अधिकारियों को ब्रीफिंग दी जाती थी, लेकिन अब धनबाद पुलिस ने नई व्यवस्था के तहत सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सीधे ब्रीफ करने का निर्णय लिया है, ताकि निर्देशों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
4: लगभग 850 ऑफिसर्स हैं सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक, जिसमें लगभग 340 सब इंस्पेक्टर और बाकी 500 प्लस एएसआई। तो हम लोग बहुत दिन से ये फील कर रहे थे कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो टाइम टू टाइम थाना प्रभारी को, डीएसपी को, सर्कल इंस्पेक्टर्स को देते हैं और वो फिर डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उससे फिर काम होता है। हम लोगों ने महसूस किया कि एक बार हम लोगों को डायरेक्ट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो ऑन फील्ड हैं, एएसआई हो या सब इंस्पेक्टर हो, सबको हम लोग बताएं कि उनसे क्या उम्मीद है, कैसी पुलिसिंग अभी हम लोग चाहते हैं, किस प्रकार से जनता के एक्सपेक्टेशन है उस पर हम लोग खड़ा उतरे, उसी को लेकर के बैच स्टार्ट किया गया है।
1: कार्यशाला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने समेत अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 1000 गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। कार्यक्रम की शुरुआत में बेनी दयाल को आइए सुनते हैं। फिल्म है ट्विस्टेड्स।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम थ्री इडियट्स, आवाजें सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की।

और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सात खून माप से लिया गया ये गाना, जिसे गाया है उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज ने।

उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज की आवाजों में गाए फिल्म सात खून माफ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम जन जन की वाणी आकाशवाणी। वाचन स्वर है राजीव कुमार, अंजना बाखला और सूरज रजक की। प्रस्तुति है राजीव कुमार की और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जन जन की वाणी। आज आप सुनेंगे इसका पुनर्प्रसारण।

कुछ आवाजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, हमारी सामूहिक चेतना का वो प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से सबसे बड़ा और प्रभावी नाम आकाशवाणी का है।

ये ऐसी आवाज है जो न सिर्फ हमें जगाती है बल्कि जागृति के उच्चतम स्तर पर ले आती है और हम पहले से बेहतर और बेहतर महसूस करते हैं।

0: सूचना ज्ञान और मनोरंजन की सर्वोत्तम खुराक अगर कहीं से हमें मिलती है तो वो आकाशवाणी ही है। बात सेहत की हो, शिक्षा की हो, युवा, महिला, बच्चे या बुजुर्गों की हो, आकाशवाणी पिछले 90 वर्षों से सभी की आवाज बनी हुई है।
1: ग्रामीण विकास और कृषि कार्य में आकाशवाणी ने जो कार्य किया है, जो जागृति लाई है, उसके करीब आज कोई खड़ा नहीं है।
0: नवीनतम कृषि अनुसंधान, पशुपालन, पशु संवर्धन या किसान जागृति की बात हो, आकाशवाणी ने हमेशा से पहली पंक्ति में खुद को खड़ा रखा है।
1: कृषि से जुड़े कार्यक्रमों की साख को इस बात से समझा जा सकता है कि बहुत सारे किसानों ने उन्नत कृषि कार्य रेडियो के कार्यक्रमों से ही सीखा है। इनमें से कुछ की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनी।
2: अपनी लोकप्रियता, अपनी पहचान और उन्नति का सारा श्रेय खेती कार्य से जुड़े श्रोता आकाशवाणी के

0: कार्यक्रमों को देते हैं। आकाशवाणी के योगदान पर बात करते हुए इनके शब्द कम पड़ जाते हैं, पर भावनाएं कम नहीं होती।
1: वर्ष 2016 में झारखंड के कृषकों का एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल दौरे पर गया था। इसमें हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के सोनडीहा तुरीवार के छवि प्रसाद भी थे।
2: कभी पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले छवि के एक सफल किसान बनने में सबसे बड़ा श्रेय आकाशवाणी का ही है। इस बात को वो हमेशा हर मंच से बहुत ही गर्व से दोहराते हैं।
3: मान के चलिए कि 2000 आकाशवाणी से जुड़े, उससे पहले क्या, मैंने आकाशवाणी ही के चलते फिर मान लिया कि हम टीवी के हुआ, उसके बाद आत्मा से जुड़े, टीवी के से जुड़े, लेकिन ये सारा चीज जो है सबसे पहले हम आकाशवाणी से जुड़े, उसके बाद मैंने इधर जुड़े हम।
4: तो आकाशवाणी में भी आप कार्यक्रम देते रहे?
3: जी, आकाशवाणी में हम देते रहे, जैसे किसान वाणी हुआ, और उससे बहुत किसान अगल बगल के मानो प्रेरित हुए, वहाँ कुछ हम जो अपना हमारा अनुभव था हम बताए। और मान लिया कि हम बकरी पाले हुए हैं, उसके बाद जैसे खेती हम किए सब, हम बरसाती प्याज, उस समय बरसाती प्याज कोई लगाता नहीं था, एक बार गेंदा का खेती किए, उसके बाद अभी ओल का खेती हो गया है, सब सारा चीज जैसे बताए, जैसे ओल ही है तो ओल को कैसे लगाना है, कितना दूरी में लगाना है, हमारा आवाज को किसान लोग सुने, उसके बाद बहुत किसान अभी भी हमको पूछते हैं कि भाई अभी अभी आप हम आकाशवाणी में आपका हम सुन रहे थे, आप बता रहे थे भैया, बहुत मैंने अच्छा लगा। के बाद हमने जैसे केवी के द्वारा हम लोग यहाँ आपको पूछा एग्रीकल्चर नई दिल्ली, वहाँ हम लोगों को खेलेगा गया, उसके बाद वहाँ से आगरा हुआ और बकरी अनुसंधान केंद्र हुआ, मथुरा हुआ, और उसके बाद में देखे वहाँ पर भी हम लोग को भी यूपी भी गए, वहाँ पर भी हम लोगों को घुमाया गया, दिखाया गया कि इस तरह से खेती है, बैंगन की खेती देखिए, बहुत प्रकार की खेती हम खाया गया। इजराइल भी गए, इजराइल गए तो इजराइल में हम लोग देखे कि कम पानी में, बहुत कम पानी में किस तरह का खेती होता है, ड्रीप में खेती हो रहा है, पैसे मंथिंग में खेती हो रहा है, ये सारा की जानकारी, पॉली हाउस में खेती हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, ये सारा भी हम लोगों को दिखाया गया। हमारा परंपरागत मान लिया कि हमारा बाप दादा खेती बाड़ी के काम करते आए लोग, और हम भी जो है सब खेती बाड़ी किए, लेकिन उस समय का खेती में और आकाशवाणी से जुड़ने के बाद, इधर के बीच आत्मा से जुड़ने के बाद खेती में कुछ बदलाव हुआ, दूसरा तरह से जो परंपरागत खेती कर रहे थे, जो सिंचाई कर रहे थे, उस समय मल्टी नहीं था, ड्रीप नहीं था, और मान लिया कि जैसे बीज, जैसे मान लिया हाइब्रिड बीज हो गया, और ये सब नहीं था।
4: जैसे इजराइल तक आप गए तो उसमें रेडियो की भूमिका कितनी है, आकाशवाणी की भूमिका कितनी रही है?
3: आकाशवाणी का भूमिका इसमें मैंने कि 80% हम आकाशवाणी का भूमिका देंगे। समय समय पर आकाशवाणी भी हजारीबाग में भी बुलाया गया, वहाँ पर तो हम गए हैं, 2-3 बार वहाँ भी गए।
0: आकाशवाणी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसके श्रोताओं में हर वर्ग के लोगों का शामिल होना है। आज भी हर वर्ग के श्रोताओं में रेडियो की लोकप्रियता है, पढ़ा लिखा तबका हो, कामकाजी हो, समाज का श्रमिक वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को अपने साथ आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों से जोड़ रखा है। 9 दशक से दिलों में, श्रोताओं के दिलों में राज करने के पीछे जो कारण है उसे एक श्रोता के नजरिए से समझते हैं, जैसा वरीय अधिवक्ता रीना वर्मा मानती है।
5: सबसे पहले रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का जो 90 साल पूरा हुआ उसके लिए सभी श्रोताओं और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऑल इंडिया रेडियो जब तक धरती रहे तब तक ऑल इंडिया रेडियो रहे, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो उस चीज का नाम है जो मोटिवेट करती है जिंदगी जीने का, एक जैसे लाइफलाइन कहते हैं वो है ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं बता दूं कि पिछले 4 दशकों से मैं रेडियो सुनती चली आ रही हूं, और सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रेडियो सुनती थी, हर एक स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो को मैं सुनती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पिछले 10 सालों में रेडियो में कई बार बोलने का मौका भी मिला है, तो इसलिए रेडियो का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: कानूनी सलाह जैसे कार्यक्रमों में आप शामिल होते रहे, फीडबैक क्या आपको जैसे किस तरह से मिलता?
5: चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, पिछले 17-18 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मुझे मौका मिला कि मैं आम जनता को कानून के बारे में सरल भाषा में बता सकूं, और इसका मौका दिया है ऑल इंडिया रेडियो ने, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया।

0: सभी को जागरूक करने का। और मैंने लगभग सभी विषयों में ऑल इंडिया रेडियो में कानूनी सलाह के अंतर्गत, कानूनी जानकारी के अंतर्गत जो बातें बताई हैं उसे लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि अच्छे अच्छे लोग और कई सारे लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम सुन रहा था कानूनी सहायता वाला और आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो इससे पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो हर जगह कोने कोने में लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है, तो इसका बहुमूल्य योगदान है ऑल इंडिया रेडियो का।
1: एक श्रोता के रूप में जब आप रेडियो से जुड़ी हैं तो वो कौन सा दौर था और वहाँ की अगर कोई स्मृति, कोई मधुर स्मृति आपके जेहन जीवन में हो तो बताइए जरूर।
0: मैं श्रोता के रूप में लगभग 90 की शुरुआत में ही जुड़ गई थी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। तो स्कूल से आने के बाद हम लोग रेडियो में पुराने से नए गाने, अच्छे अच्छे गाने सुना करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी गायक थे तो हमें रेडियो से ज्यादा जुड़ाव हो गया। और हमें उस चीज का मतलब रेडियो के जो गाने होते थे, आप 1950 के गाने सुन रहे हैं, आप 1960 के गाने सुन रहे हैं, आप हर गायक को जान रहे हैं। पुराने पुराने गायक को आज के बच्चे नहीं जान पाते, लेकिन उस जमाने हम लोग सारे गायकों को इसलिए जान पाते थे कि ऑल इंडिया रेडियो में जो भी गाना प्रस्तुत किया जाता है वो गायकों का नाम, गीतकार का नाम, लेखक का नाम, सबका नाम बता के बताया जाता। तो हमारा एक ज्ञानवर्धन हुआ करता था। फिर एक सखी सहेली प्रोग्राम आकाशवाणी में आता था। जब पिछले 24 साल पहले मेरी शादी हजारीबाग में हुई है और मैं हजारीबाग रेडियो स्टेशन से तब से जुड़ी हुई हूँ, और मैं मेरी शादी के बाद मैं लगातार 24 साल से रेडियो सुनते चली आ रही हूँ। सखी सहेली प्रोग्राम और सुबह आकाशवाणी के जितने प्रोग्राम, जो रंगारंग कार्यक्रम, जो लोकगीत, शाम को जो लोकगीत, आदिवासी लोकगीत वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, मैं सब सुना करती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे अपने धरती से, अपने झारखंड के लोक संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है, वहाँ के लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, उनकी बातों को समझने का मौका मिल रहा है। इसलिए आकाशवाणी हजारीबाग मैं 24 साल से जुड़ी हूँ और एक मुझे अपना परिवार जैसा लगता है आकाशवाणी हजारीबाग। और मेरे हर सुख दुख में लगता है कि रेडियो के तौर पर ये मेरे साथ खड़ा है और मुझे मोटिवेट कर रहा है। आकाशवाणी में जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम आता है शुक्रवार और सोमवार को, अंगना जो प्रोग्राम है, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। और जो उद्घोषकों का प्रोग्राम प्रस्तुत करने का तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। इसलिए मुझे ऑल इंडिया रेडियो को मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि वो सभी के जीवन को एक तरह से मोटिवेट करके चला रहे हैं। हर आयु वर्ग के सेवानिवृत्त हो या छात्र हो या गृहिणी हो या कामकाजी महिला पुरुष हो, उन्हें रेडियो में गाने सुनते हुए, प्रोग्राम सुनते हुए काम करने में गति मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी हजारीबाग को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग जिला स्कूल कैंपस में करीब 1.5 दशक से गणित पढ़ा रहे शिक्षक गिरीश कुमार रजक एक सजग श्रोता तो हैं ही, आकाशवाणी के शैक्षणिक प्रसारण, वार्ता, भेंट वार्ता और परिचर्चा में कई बार शामिल रहे हैं। उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से हमारे साथ साझा किया है।
3: जब से रेडियो आया और अब तक अगर देखा जाए तो रेडियो की उपयोगिता बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर हमारी सेनाएं जो दुर्गम स्थलों पर रहती हैं, उनको मैसेज या उनके मनोरंजन के रूप में हो। तो अगर कहा जाए कि रेडियो की उपयोगिता जो है सही मायने में अतुलनीय है। अगर हम देखें तो रेडियो से हम शिक्षा संबंधी जानकारी, जैसे दुर्गम स्थलों पर जहां इंटरनेट, बिजली, अभी भी बहुत जगहों पर इन सब चीजों की पहुंच नहीं है वहां, तो उन सब स्थलों पर रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियां, शिक्षा संबंधित किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उन सबको प्रसारित करके दी जाती हैं। शिक्षा के बाद जैसे देखा जाए तो कृषि में जो है, तो कृषि में भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, कीटनाशकों का उपयोग वगैरह जितना किसान भाई जो है सो चूंकि खेत पर रहते हैं तो रेडियो के माध्यम से जो है सो वे जानकारियां लेते रहते हैं, मौसम का पूर्वानुमान हो या फिर कृषि से संबंधित जानकारियां हो, तो इन सब चीजों को वो काम करते करते भी ये सब जानकारियां लेते रहते हैं और अपने मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन भी है जो हमेशा खेतों पर काम करते हैं। तो इन सब चीजों से जो है उनको जो पूर्वानुमान, जो कुछ मौसम संबंधित, कीटनाशकों से संबंधित, उत्तम किस्म के बीजों से संबंधित जानकारियां अगर उनको प्राप्त हो जाती है और वो भी कार्य करते हुए खेतों में भी रेडियो पहुंच जाता है ना, और वहां पर उसमें कोई बिजली या इंटरनेट की आवश्यकता है नहीं, इन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो इसकी भूमिका बहुत ही बड़ी हो जाती है।
1: जैसे

0: आपके अपने जीवन में या आप आपका आपका जो विषय है गणित, इन सब चीजों में रेडियो को लेकर आपका क्या अनुभव है?
1: जैसे अपने जो दैनिक जीवन, हम लोग तो उस दौर के भी लोग हैं जिस समय इंटरनेट नहीं था और टेलीविजन वगैरह बहुत कम उपलब्ध थे, तो हम लोग एक मनोरंजन या कुछ जो शिक्षा संबंधित जो रेडियो के माध्यम से जो है सो प्रसारित होता था, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो सोच या फिर जो कोर्स वगैरह आते थे उससे हम बहुत मोटिवेशन हमको मिलता था और बहुत सारी चीजें हम मोटिवेट होकर के मनोरंजन के माध्यम से और जो चीजें सीखते थे वो बहुत ही सराहनीय होता था। और आज भी अगर देखा जाए तो जैसे परीक्षा संबंधित तैयारियों की जानकारी वगैरह जो रेडियो पर हमेशा अक्सर प्रसारित होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़ करके अपना व्याख्यान देते हैं, तो ये दुर्गम स्थलों तक, जहां जैसे कहा जाता है कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, तो ये सब जो चरितार्थ होता है कि रेडियो की पहुंच वहां तक है जहां इंटरनेट की या फिर बिजली की समस्या है ये सब नहीं है, तो वहां के लोग भी बहुत लाभ लेते हैं रेडियो के माध्यम से।
0: जैसे आपका अपना विषय है, आपको भी मतलब कभी व्याख्यान देने का मौका मिला हो, इंटरव्यू वगैरह या टॉक वगैरह प्रकाशित की हो, तो इसका अनुभव आपका कैसा रहा रेडियो के साथ?
1: हाँ, इसका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि जैसे हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैथ साइंस की उपयोगिता आज के जो युग में है, तो वो सब की चर्चाएं हमेशा हम लोगों ने करी है और हमारे जीवन में भी ये सब सुन करके हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिला है और हम उससे लाभान्वित हुए हैं।
0: सर, इसका आपके अपने जीवन
1: में भी हमको बहुत लाभ हुआ है। रेडियो की उपयोगिता, जैसे हजारीबाग में इसका जो प्रसारण होता है उसमें हमको बहुत बार बुलाया गया है, तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करी जाती है, उसमें मैथ्स रीजनिंग जीएस वगैरह की तैयारियों के बारे में रेडियो पर प्रसारण होता है। और विशेष करके एग्जाम के दौरान जब कुछ दिन पहले कैसे जो स्टूडेंट्स हॉपलेस होते हैं, एक एग्जाम फोबिया टाइप का जो बनता है,
0: मनोवैज्ञानिक
1: दबाव जो होता है, उन सब दबावों से कैसे निपटा जाए, जैसे प्रधानमंत्री भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो ये सब चीजें जो है सो कैसे रेडियो के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक ये पहुंच बनती है। मेरा अनुभव है जो जैसे लॉज वगैरह में जो स्टूडेंट्स रहते हैं या अपने गांव से निकल करके आते हैं शहर में, और जहां उनके पास कोई टेलीविजन या कुछ का साधन नहीं होता है, एक मोबाइल होता है जिसमें ऐप रेडियो का भी उसमें उपलब्ध है, तो रेडियो के माध्यम से वे हमें सुनते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी या फिर परीक्षा के दौरान जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उन सब चीजों से कैसे निकला जाए, हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा करी है, डिस्कशन भी हुआ है जी, और स्टूडेंट्स का ये फीडबैक रहा है। हमारे स्कूल से जुड़े हैं वहाँ हजारों छात्र हैं, तो वे हमको आकर के बोलते हैं कि सर आप तो कल रेडियो पर थे, तो हमें बहुत गर्व फील होता है कि आपको लोग सुनता है, और उनका कहना होता है कि हाँ हम जरूर इसे लाभ लेते हैं सर, जैसे पिछले बार ही किन किन टॉपिक्स पर कितना मार्किंग होता है, कैसे स्टेप मार्किंग होता है, ये सब बहुत सारी चीजों पर चर्चा हमने करी थी और इसका प्रसारण भी हुआ था हजारीबाग रेडियो के माध्यम से, और फीडबैक के रूप में हमारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर ये बहुत लाभ मिला हमको, और तब हमको पता चला कि नहीं रेडियो का जो प्रसारण है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो लॉज में रहते हैं जहां उनके साथ पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके साथ सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ये रेडियो के माध्यम से सुनकर जो जानकारियां लेते हैं, तो ये फीडबैक से उम्मीद और हमारी बढ़ गई कि रेडियो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इन सब एक्टिविटीज में, इन सब चीजों पर, ताकि लोग जो जिनके पास संसाधन की कमी है वे ज्यादा लाभान्वित हो पाए।
2: नारायण प्रसाद की उम्र 85 वर्ष के आसपास है। रेडियो सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के पेशे से वे जुड़े हैं। 90 के दशक से वे रेडियो से भी जुड़े हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में इनकी गहरी रुचि है, दिलचस्पी है। इनके शब्दों में हम आम श्रोताओं के मन के भावों को समझ सकते हैं, टटोल सकते हैं।
3: जिस समय से प्रसारण हो रहा है एफएम का, तब से हम बराबर रेगुलर जो है सो का हम श्रोता है
0: हजारीबाग
3: जी। इसमें खास करके हमको जो फोटेज देते हैं न्यूज का, सेंट्रल हो कोई लोकल न्यूज हो, प्रादेशिक समाचार, साथ में आपको म्यूजिक खेती बाड़ी सब हमको प्रोग्राम तो अच्छे ही लगते हैं, करीब सभी सुनते ही हैं।
0: गीतों के प्रति आपकी दिलचस्पी रहेगी?
3: गीत संगीत का इंटरेस्ट तो हमको शुरू से ही है।
0: कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद है?
3: अभी जैसे कि हमको विभारती प्रोग्राम तो हमको बराबर सुन ही रहे हैं और अच्छा ही लगता है। साथ में यहाँ वाला जो रिले होता है, आपको फरमाइश है, हेलो फरमाइश हुआ
0: जो फरमाइशी प्रोग्राम है,
3: हाँ हाँ,
0: ज्यादा पसंद है।
3: हाँ जी।
0: तो किस तरह के गीत आप

0: पसंद करते
1: हैं? वो 70 दशक का जो है 80 दशक के गाने हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुछ मैंने हद तक आ गया आपको 90 तक ले। हाँ, क्लासिकल गाना हमको ज्यादा पसंद है।
0: और किस तरह का, जैसे कोई गायक या गीतकार है जिनका हाँ, आपको ज्यादा पसंद रहा हो?
1: गीतकार में आपको सोचे कि हमारा तो बहुत पेटेंट है आपको आनंद बख्शी जी, R.D. बर्मन। और संगीतकार में हमारा पेटेंट है आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: गायक और गायिकाओं की बात, किनके गीत ज्यादा आपको पसंद?
1: गायक तो सब बढ़िया बढ़िया है सर, रफीक जी हमको बहुत पेटेंट है और किशोर कुमार तो है ही
2: ज्यादा लोग।
1: हाँ हाँ हाँ, मुकेश तो खैर मेलोडियस।
2: शैलेंद्र के गीत आपको कैसे लगते हैं?
1: अपना जो है गायकी अच्छा उनका है।
2: रेडियो के जैसे अभी 90 साल पूरे हो गए, तो जैसे जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो से जुड़ाव रख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए?
1: अब उनके ऊपर ना है, हम तो अपना व्यक्तिगत अपना राय देते हैं, हमको सब अच्छे लगते हैं।
3: राजू केसरी पान की दुकान चलाते हैं, जीविकोपार्जन का इनके पास यही एक साधन है। दुकान में रेडियो इनका बजता रहता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बात करते हुए लगता है जैसे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व से हम संवाद कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व में आए इस सकारात्मक बदलाव के बारे में राजू केसरी कहते हैं कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने मुझे हर तरह की शिक्षा दी है।
4: रेडियो लगभग 97 से हम सुन रहे हैं।
2: 97 से सुन रहे हैं, तो मतलब किस तरह के
0: कार्यक्रम आप ज्यादा सुनते हैं?
4: रेडियो का तो सभी प्रोग्राम अच्छा होता है, सब ज्ञानवर्धक होता है, लेकिन मुख्यतः न्यूज वगैरह और परिचर्चा जो आती है रेडियो पे, नेशनल परिचर्चा में सामायिक विषयों के बारे में जो बताया जाता है उस सब के बारे में,
2: अखिल भारतीय वार्ताओं का
0: जी समाचार आप रेडियो का ज्यादा सुनते हैं?
4: मतलब समाचार नहीं छोड़ते हैं हम, हर हालत में सोचते हैं कि सुनिए।
2: मतलब राष्ट्रीय और प्रादेशिक?
4: प्रादेशिक दोनों।
2: हाँ। और इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं?
4: सखी सहेली है, त्रिवेणी है, बहुत सारा है। सुबह में डॉक्टर आते हैं, सुबह में
2: स्वास्थ्य
4: वार्ता वाले जो आते हैं, डेली का प्रोग्राम है, घर संसार है, काव्य धारा है, बहुत प्रोग्राम है, लोकगीत भी है, लोकगीत।
2: और फिल्म संगीत के कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है?
4: फोन फ्रेंड है, आपकी चाहत है, फोन पे जो कॉल होता है, फोन इन फरमाइश।
2: अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप रेडियो कह रहे हैं 97-98 से सुन रहे हैं, तो लगातार सुन रहे हैं, तो इस जुड़ाव के पीछे का क्या कारण है?
4: परफेक्ट न्यूज, भरोसेमंद न्यूज, रेडियो में प्रोग्राम आता है वो भरोसे लायक होता है, कोई उसमें मतलब विवाद वाली बात नहीं है, सब ज्ञानवर्धक होता है, सभी उम्र के लोगों के लिए होता है,
2: सभी उम्र के लोगों के लिए।
4: अगर रेडियो सुन ले लोग एक साल भी, तो बहुत बेसिक ज्ञान बहुत सारे सब्जेक्ट में हो जाएगा उन।
2: मतलब रेडियो एक तरह से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, हाँ, हाँ, तीनों चीजें आपको वहाँ से
4: एकदम सभी कुछ वहाँ पर उपलब्ध है, और कहीं जाने का दरकार नहीं है। और रेडियो पहले के बनिस्बत अब और भी उम्दा होते जा रहा है, उसका प्रोग्राम और भी परिष्कृत होते जा रहा है, बहुत अच्छा होते जा रहा है, प्रसारण बहुत साफ है, क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। पहले जो हाँ एकदम डिजिटल है, पहले बहुत डिस्टर्ब होता था, लिंक उसको नहीं मिलता था, तो अब तो एकदम क्लियर है। हम जब सुनते हैं, लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं रेडियो है या कुछ दूसरा चीज बजा रहे हैं आप, तो बहुत अचंभित भी होते हैं, अरे रेडियो में इतना अच्छा आवाज आ रहा है।
5: रेडियो से जुड़ा एक किस्सा पत्रकार कृष्णकांत सिंह ने भी हमारे साथ साझा किया है, जिसे सुनते हुए हम उसी समय में पहुंच जाते हैं।
3: ये वो दौर था जब संचार का एकमात्र साधन रेडियो ही था, आकाशवाणी के कार्यक्रम ही दुनिया को समझने जानने का एकमात्र जरिया था।
6: वर्ष था 1967, उस समय हमारे पिताजी एक रेडियो लिए थे, बड़ा बाजार में एक रेडियो दुकान था, एक बैंड की रेडियो थी और उसमें एक बैटरी लगता था 9 वोल्ट का, उसमें एक वो लाइसेंस मिला था, ऊपर रेडियो छपा हुआ था और उसमें निर्गत की तिथि भी लिखा हुआ था, रेडियो लाइसेंस भी ऊपर लिखा हुआ था। तो उस जमाने में रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी लोगों को। मेरे स्मरण में है कि आज भी मेरे यहाँ वो रेडियो लाइसेंस पड़ा हुआ है, हमारे गांव में लाइसेंस, हम उसको हाल फिलहाल घर साफ हो रहा था तो हम उसको सुरक्षित रख दिए हैं अपना स्मरण के लिए, यादगार के लिए। तो उस जमाने में रेडियो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, खासकर ग्रामीण इलाकों में अलग पहचान था, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, कुछ था नहीं, तो रेडियो में आज भी हमको स्मरण है कि वो 7:30 बजे

0: से प्रसारित होता था। 10 मिनट का समाचार होता था वो, जिसमें आपको लोकल बिहार हुआ करता था उस समय, तो पूरा बिहार झारखंड का न्यूज उसमें मिलता। फिर सुबह 8 बजे नेशनल समाचार होता, उसमें नेशनल समाचार में पूरा इंडिया का भी सुन सकते थे, कुछ बाहर का भी इंटरनेशनल समाचार भी हुआ करता था। इसके बाद यहाँ का समाचार लोगों को मिलता था, राजनीति हो, विज्ञान के क्षेत्र के हो, शिक्षा के क्षेत्र के हो, हर समाचार उसमें मिलता था।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के
0: हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम विविध भारती का कार्यक्रम जो था बहुत पॉपुलर हुआ करता था। और ऐसे ही रांची, पटना, सारे रेडियो स्टेशन, भागलपुर हो, दरभंगा हो, सबका एगो अलग अलग टाइम में संगीत जरूर होता था। और सबसे बड़ा है जो यहाँ श्रोता चिट्ठी लिखते थे वो कार्यक्रम में, और वह लगा के रेडियो सुनते थे कि आज मेरा नाम आ रहा है कि नहीं, तो लीजिए आपके पसंद का हम गाना सुना रहे हैं, ये आप हैं झुमरी तिलैया। उस समय झुमरी तिलैया बहुत नामी था, जो पूरा माने इंडिया में आपको मिलता है झुमरी तिलैया, आप झुमरी तिलैया का नाम जरूर सुनते थे। और लोग बहुत मजा से, बहुत ही माने समझिए कि उत्साह से रेडियो सुनते थे कि आज मेरा नाम दिया है। चर्चा होता था गांव में कि आज रेडियो में फलना आदमी का नाम दिया था। लोग लिख के पसंद का गाना भेजते थे, यहाँ से चिट्ठी लिखते थे लोग, पोस्टकार्ड में, अंतर्देशी में। तो उस जमाने का एक अलग दौर था, उस जमाने की बात थी। खासकर शिवा का गीतमाला जो बाद में कहलाया, पहले बीना का गीतमाला था। अमीन सयानी की वो आवाज, वो बोलने का तरीका बहुत ही माने आज भी कानों में जो है गूंजता है वो आवाज। समय होता था बुधवार के दिन और शाम में 9 बजे, शायद हमको याद है 9 बजे आसपास होता था कार्यक्रम। और उसमें जो साप्ताहिक जो टॉप का गाना होता था, फिल्मी गाने, वो अमीन सयानी जी सुनाते थे। और बहुत ही एक लजीज आवाज, एक मधुर आवाज, और कानों को बहुत ही माने हाँ कनपिरी कही उसको, इस तरह का जो है सो उस समय माहौल था। हर घर में रेडियो था। अच्छा, स्टार्टिंग में होता था कि रेडियो एक होता था, लेकिन अगल बगल के लोग भी समाचार सुनने चलाते थे। एक माचा होता था, माचा मीन्स जिस पर पोरा रखा जाता था, तो जब सूखा मौसम हो, बरसात ना हो, समय उसको टांग दिया जाता था और लोग कुर्सी लगा के या खटिया पर बैठ के और वहाँ पे रेडियो का मजा लगे, टांग दिया जाता था ऊपर और फुल साउंड करके, और वहाँ पे 10 गो आदमी, 8-10 आदमी रेडियो खूब मिजाज से सुनते थे। उसके बाद समाचार सुनने के बाद उस पर चर्चा होती थी, राजनीति होती थी, जिसको हम लोग चौपाल भी कहते हैं। तो इस तरह का वो यादगार एक भूले बिसरे बात हो गई।
2: संचार, जन संचार के माध्यमों में आज भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों का कोई जोड़ नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो दशक, दो दशक से नहीं, 4-5 दशकों से लगातार आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं।
3: आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता ऐसी थी जिससे श्रोताओं के दिलों में इसने अपना स्थान बना लिया। ऐसे श्रोता न सिर्फ कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते थे, बल्कि श्रोता संघ और रेडियो क्लब जैसे ग्रुप बनाकर कार्यक्रम सुनते रहे हैं।
2: इस प्रयास से इनकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी। व्यक्तित्व को निखारने में आकाशवाणी के कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि रेडियो के प्रसारण की क्वालिटी में निरंतर बेहतरीन बदलाव होते रहे।
3: AM प्रसारण के बाद FM ने तो क्रांति ही ला दी। साफ और स्पष्ट आवाज ने तो श्रोताओं को अपना मुरीद बना डाला। आज न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से दुनिया भर में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। रेडियो के कार्यक्रमों का दायरा पहले से ज्यादा विस्तृत हो गया है।
2: विस्तृत होता यह दायरा आकाशवाणी के भविष्य को, उज्जवल होते भविष्य को रेखांकित करता है।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम जन जन की वाणी आकाशवाणी। वाचन स्वर था राजीव कुमार, अंजना बाखला और सूरज रजक का। प्रस्तुति थी राजीव कुमार की और कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। उसके बाद 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या के आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। न्यूज एट 9 का समय होगा रात्रि 9:09 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही सुनेंगे आप इसे। और स्पॉटलाइट का समय होगा रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 9:30 से रात्रि 10 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो हमारे इन तमाम प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए, जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है, शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के

0: सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं, वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने? यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे? क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, अब संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे, क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा, वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा, वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं। फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे, उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमिला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स है रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी, और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी, और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर

0: ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गुवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म
1: जी।
0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलोअप, उसने कहा क्या फॉलोअप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलोअप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
2: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
2: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
3: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे
2: जी।
3: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही।

0: सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है।

0: जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
1: को, पंत जी हो, सबने, महादेव वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गांव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उससे बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल

0: कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेते बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल से मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही

0: अच्छे उद्गार रखे। लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है,

0: ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है।
2: बिल्कुल।

0: मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
2: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उस पर जोर देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कभी पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिये वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामायिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
3: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
3: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो,
3: तो वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
4: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
6: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े-बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
6: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
7: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
8: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका

0: अध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय

संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: बिजनेसेस R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज

0: एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती है पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।

8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आईं, क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है। फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज, शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थीं। वो कुछ अलग करना चाहती थीं। शिल्पा जो चाहती थीं, वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेराय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

ये रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

0: शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।
1: कुछ

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

दीपा ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्मी सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार्स से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती है। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता है।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्क्याओ फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आईं, साथ थे जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

तो मानना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें, हमारी यही

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था तीन दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेशर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्स और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम 24 घंटे। आवाजें हैं लता, आवाजें हैं आशा भोसले और तलत अजीज की।

0: कहिए
1: अगर हो सके मेरी आंखों में रहिए।
2: धरती कहे पुकार के इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में।
3: जे हम तुम

कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म का नाम आ गले लग जा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आ गले लग जा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। और अब इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है। दीजिए श्वेता को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। तो इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे।

0: that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per block more crop, which is talking of micro-irrigation drip, and this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atalbihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean reforms within the sector that the government is looking at the large the problems that have been affecting at this particular sector.
1: Okay. Mr. Mishra, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख दो तीन इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और अब मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है.
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो
1: जी.
2: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है. इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है. एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है। फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर को जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है। क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है एक कोलैबोरेटिव वे में, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं

0: को सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आदमी साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं
0: जी।
1: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होती है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा सा इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स है, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनी, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनी जी,
0: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल ministry and there's a ministry of cooperation, so you think that enhancing the income of farmers, these allied sectors are playing a very major role?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस

0: एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: तो पैक्स जो कह रहे थे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
0: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारण बस रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनके जरूरत
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस्ड बायोगैस में, और ये कंप्रेस्ड बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये

0: सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप पे एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहां से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that the collective power is there. And Ms. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international प्राइस एट विच इंडिया बॉट यूरिया वाज $954 पर टन. सो रफली इफ यू टेक $1,000 इट कम्स टू अराउंड 95,000 पर टन. 95,000 मीन्स 9500 पर क्विंटल. इट इज ए बिग अमाउंट. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
2: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
2: so that the end product also becomes cheaper for the consumers and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
3: Thank you.
0: Thank you very much.
2: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Vinod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928.
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है. ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके. इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं. वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
7: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
6: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
6: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।